0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को

0: मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय प्रातः के 6:40। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हम अपना अधिकांश समय मात्र सोचते हुए व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्त गतिविधियां हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित होती हैं, पर हम कभी भी फुर्सत में और पूरी सजगता के साथ दिमाग से 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं और न उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप अपने सब काम बंद कर दीजिए और अपने दिमाग से परिचय प्राप्त कीजिए। दिमाग से संपर्क करने का मतलब है हम अपने सब काम बंद कर दें और शांतिपूर्वक उसके पास बैठ जाएं। सचेतन होकर मस्तिष्क से संपर्क को ध्यान लगाना या मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिविधि का विपरीत या विलोम ध्यान लगाना है। हाँ, तो आप ध्यान के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि आपका दिमाग निरंतर बिना रुके हुए सक्रिय बना रहता है। आप ध्यान पूर्वक इसकी गतिविधि को देखिए। मस्तिष्क के साथ संपर्क स्थापित करने और इसके समृद्ध कोश की ओर देखने के लिए समर्थ होने में थोड़ा समय लगता है। पेचकस को घुमाने पर शीशी की डाट धीरे धीरे बाहर आ जाती है। मस्तिष्क बड़ा चंचल है, हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे शरीर के अंगों के संकल्प के अलावा उहा पोह उखाड़ पछाड़ करता रहता है। इसकी चंचलता की ओर इंगित करते हुए गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। उत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बाहरी गतिविधियों को रोकना वैराग्य का प्रथम सोपान है। आपने इस सोपान को पार किया है। अब आप इस स्थिति में हैं कि विश्वास कर सके कि हमारे पास मस्तिष्क या दिमाग नाम की वस्तु है। मस्तिष्क से परिचय होने की स्थिति में हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वरना हमारा दिमाग हमें चाहे जिधर ले जाता है और चाहे जिस कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराता रहता है। इसको आप सुनामी लहरों का भाई बंधु समझ लीजिए।

0: हम जब ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारे मन में बसने वाले विचार प्रकट होने लगते हैं। हमको विदित होता है कि हमारे पास मानसिक विकारों का कितना बड़ा खजाना है। इस खजाने से साक्षात्कार होने पर हम शुरू में तो घबराने लगते हैं, परंतु धीरे धीरे उनका आवेग कम होने लगता है। यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मस्तिष्क हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक निश्चित समय पर ध्यान द्वारा उत्पन्न कंपन अपने स्वभावानुसार पुनरावृत्ति करते हैं और अनुकूल वातावरण का सृजन कर देते हैं। समय और अभ्यास के साथ ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, हमारा मस्तिष्क मनमानी करना कम कर देता है और हमारी इच्छा अनुसार विचार उत्पन्न करने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया दिमाग के साथ हमारी मित्रता करा देती है, वो आवेग मुक्त हो जाता है, हम भी आवेग मुक्त हो जाते हैं, लगाम की जरूरत नहीं रह जाती, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, परंतु इसका निर्वाह सरल नहीं है। ये हमारे सामने हमारा विकृत रूप प्रस्तुत करती है, जिससे दो चार होने के लिए हमें साहस बटोरना पड़ता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से करते हुए केवल अपने दिमाग से दोस्ती करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करना है। याद रखिए, सच्ची दोस्ती की पहचान है दोनों के मध्य सुखद शांति।
1: अभी हमारे श्रोताओं ने सुना आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। लीजिए प्रस्तुत है रमेश चंद्र माहेश्वरी का काव्य पाठ, कार्यक्रम काव्य धारा के अंतर्गत।
2: मेरी पहली रचना, हिंद और हिंदी दोनों से हम सबको है प्यार। हिंद

छंद रसों से करती है श्रृंगार, हिंद और हिंदी दोनों से हम सबको है प्यार। हिंदी तो रसधार है साधो, हिंदी है रसधार, हिंद और हिंदी दोनों से हम सब

भूखे थे गर्मी के मारे, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा भी।

से धरा हुई लासानी आए मेघालाए में हां जमकर बरसा पानी। अंतिम पंक्तियां देता हूं।

0: आई कि सब।
1: काव्य धारा के अंतर्गत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना रमेश चंद्र माहेश्वरी का काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: नवति अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां 16 भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपान्त्यचरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्य प्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपान्त्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, ओडिशा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूट आउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री ट्रेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने

0: का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी का विषय है खुश रहिए स्वस्थ रहिए।
2: खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को ये काम भी बहुत मुश्किल लगता है। आप भी खुश रह सकते हैं, जरूरत है जीवन शैली में थोड़े से परिवर्तन की। वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना अपने को नियमित ढर्रे से ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुश रहना ही अच्छे स्वास्थ्य का सबसे आसान तरीका है। प्रोफेसर डेविड बार्बर्टन के अनुसार आनंद और स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। हंसने या प्रिय संगीत सुनने के 10 मिनट बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता वाले तत्व होते हैं और ये असर 2 दिन तक रहता है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हम तनावों में इतने मशगूल रहते हैं कि आनंद पाने के महत्व को न समझ पाते हैं और न ही उसको अधिक समय दे पाते हैं। परंतु आनंद और खुशी प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो आपको हर्ष और उत्साह से भर देते हैं। अक्सर ही ये क्षण स्वच्छंद होते हैं, पर कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप सोच समझकर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। ये क्षण हर एक के लिए अलग होते हैं, पर इनमें जादुई सूर्यास्त निहारने से लेकर संगीत, साहित्य या कला की सराहना जैसे अनुभव भी शामिल होते हैं। जीवन की उन छोटी छोटी बातों की सराहना करने का प्रयत्न कीजिए जिनकी ओर व्यस्तता के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे मकड़ी का कुशलता से जाला बुनना, बगीचे के फूलों की मीठी महक, घर के पास के मंदिर की बजती घंटियां, आपके बच्चों का सुबह सुबह दबे पांव आपके बिस्तर में घुसने का अंदाज। आम धारणा के विपरीत कवि शारीरिक या मानसिक वेदना से पीड़ित नहीं होता। अध्ययन दिखाते हैं कि कवि अधिकतर दीर्घायु होते हैं और बाकी सबसे कहीं ज्यादा खुश रहते हैं। इसलिए अपने विचार लिख डालिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बातें आपके मन में बोझ बनकर घूम रही हैं, उनको लिख डालने से आपके शरीर के अंदर का शोभ, दुख और ग्लानि शब्दों के रूप में बाहर आ जाती है और फिर आप जिंदगी के अच्छे पहलू की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप रोजाना डायरी लिखें, ये काफी है कि जब मन और बहुत ज्यादा बोझ तले दबा रहा हो तभी आप अपने सारे विचार लिख डालें और हल्का महसूस करें। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रसन्न हैं, वे दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं और दूसरों की मदद करने से उन्हें और भी प्रसन्नता मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घंटों तक आप स्वयं सेवक ही बने रहें। हालांकि अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। दूसरों को खुशी देना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे किसी की प्रशंसा करना या अकेलेपन की जिंदगी बिता रहे पड़ोसी से बातें करने के लिए रुक जाना। जब आप महसूस करती हैं कि आपकी बातों से वो खुश हुआ है या उसका जी हल्का हुआ है तो आपको भी आंतरिक प्रसन्नता का एहसास होता है। मनपसंद गाना या संगीत सुनकर भी आपका मन पल भर में ही बदल जाता है, पर हम संगीत को बजाकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हेडफोन खरीद लें और ध्यान से बैठकर संगीत सुनें। अगर आपको ये सुनकर खुशी होती है तो वो आपके समय का

0: दुरुपयोग है। कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी औषधि होती है और डॉक्टर मानते हैं कि ये मात्र कहावत नहीं है। नॉर्मन काजिम्स एक अमेरिकी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन को स्पॉन्डिलाइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी थी। उन्होंने पाया कि 10 मिनट तक खुलकर हंसने से उनका दर्द इतना कम हो गया है वो थोड़ी देर सो सकते हैं। खुशी का अर्थ है आप भीतर तक अपने से खुश हों, और अगर आपके भीतर ही भीतर किसी कारणवश कड़वाहट भर गई हो तो ये असंभव है। अगर आप स्थिति में सुधार नहीं ला सकते तो आप अपने अंदर की सारी कड़वाहट कागज पर लिख डालें। वैर भाव द्वेष की आग में जलते रहने के लिए जीवन बहुत छोटा है। अगर आपका किसी मित्र या परिवार के सदस्य से मनमुटाव हो गया हो तो संबंधों की दरार को ठीक करने के लिए पहला कदम आप ही उठा लें।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज आपने जानकारी सुनी खुश रहिए स्वस्थ रहिए विषय पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 7:10 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें, जिसमें आज जानकारी का विषय है सूकर पालन का सही तरीका।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रमोद सिंह। देखिए किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है सूकर पालन का सही तरीका। किसान भाइयों, सूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में शुरू करके किसान और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो ये रोजगार और पोषण दोनों की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों, सूकर पालन शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सूकरों की अच्छी नस्ल का चयन करें। अच्छी नस्ल के सूकर तेजी से बढ़ते हैं, कम समय में अधिक वजन प्राप्त करते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता भी बेहतर होती है। देश में लार्ज व्हाइट, यॉर्कशायर, लैंड्रेस, ड्यूरोक और हैम्पशायर जैसी उन्नत नस्लें बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन नस्लों या इनके संकर सूकरों का चयन करना जरूरी होता है। हमेशा स्वस्थ, सक्रिय और रोगमुक्त पशु ही हमें खरीदना चाहिए। सूकरों के लिए उचित आवास भी बहुत आवश्यक है। उनका बाड़ा साफ सुथरा, हवादार और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि वर्षा का पानी जमा ना हो सके। फर्श पक्का और हल्की ढलान वाला हो जिससे सफाई आसानी से की जा सके, और प्रत्येक सूकर के लिए पर्याप्त जगह हो और पीने के लिए हर समय स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे। गर्मी के मौसम में ठंडक और सर्दी में उचित सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं संतुलित आहार की। सूकर सर्वाहारी होते हैं लेकिन अधिक उत्पादन के लिए संतुलित भोजन देना बहुत जरूरी होता है। उनके आहार में मक्का, गेहूं का चोकर, सोयाबीन, खली, खनिज मिश्रण और विटामिन उचित मात्रा में शामिल होने बहुत जरूरी होते हैं। छोटे बच्चों, बढ़ते हुए सूकरों और गर्भवती मादा सूकरों के लिए अलग अलग पोषण की आवश्यकता होती है। बासी या सड़ा गला भोजन कभी नहीं देना चाहिए। संतुलित आहार से सूकर तेजी से बढ़ते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। सफल सूकर पालन में प्रजनन प्रबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मादा सूकर सामान्यतः 8 से 9 महीने की आयु में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। स्वस्थ नर और मादा का ही प्रजनन कराना चाहिए। किसान भाइयों, गर्भावस्था के दौरान मादा को पौष्टिक भोजन, साफ वातावरण और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चे जन्म लेने के बाद उन्हें माँ का पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि यही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, सूकरों को रोगों से बचाव पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। समय समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा देनी बहुत जरूरी है। बाड़े की नियमित सफाई करें और कीटाणुनाशक दवाओं का उपयोग करें। यदि किसी सूकर में भूख कम लगना, बुखार, सुस्ती या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। याद रखें, उपचार से बेहतर है समय पर बचाव करना। सूकर पालन से अतिरिक्त आय के भी कई अवसर हैं। सूकर का गोबर उत्कृष्ट जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे बायोगैस भी बनाई जा सकती है जिससे ईंधन की बचत होती है। यदि किसान सूकर पालन को खेती, मत्स्य पालन या अन्य पशुपालन गतिविधियों के साथ जोड़ दें

0: तो उनकी आय में और अधिक वृद्धि हो सकती है। किसान भाइयों, आज सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, ऋण और अनुदान की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इच्छुक किसान अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या बैंक से संपर्क कर इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम तो बस आपको यही कहना चाहेंगे कि यदि अच्छी नस्ल का चयन, संतुलित आहार, स्वच्छ आवास, नियमित टीकाकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाया जाए तो सूकर पालन एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। ये न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का भी एक प्रभावी माध्यम है। तो किसान भाइयों, अगर आप सूकर पालन करना चाह रहे हैं तो आप वैज्ञानिक तरीके से अवश्य सूकर पालन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: खेती की बातें के अंतर्गत आज आपने जानकारी सुनी सूकर पालन का सही तरीका विषय पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज के हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओ, आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइट और इनसाइट। रात्रि 10 बजे श्रोता सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आज संध्या 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी संध्या 5:15 पर, जिसमें आज क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज लव स्टोरीज और फिल्म संगीत का। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे राशिद बदर साबरी और साथियों के स्वर में कव्वाली, समय रहेगा संध्या 7:32 पर। ये तो थी रूपरेखा आज के कुछ कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पारित कर दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 भी कल पारित हो गया।
4: इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। कल ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया।
5: मानसून सत्र में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।
2: उधर विधान परिषद में कल उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है।
6: करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड को प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। समाचार कक्ष से अरुण।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
7: इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेसनायर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ के DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डीवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, 2 साल तक लिए उनको भी डीवार किया गया।
2: NHAI के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण कल से शुरू कर दिया। पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। शुल्क भुगतान 12 अगस्त को शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
8: अभ्यर्थी 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
9: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय के भवनों को एकरूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। यह समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
2: राज्यपाल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। बसपा विधायक के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है।

0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में NHAI ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:31 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: सुप्रभात श्रोता मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। आज का अंक लेकर उपस्थित हूँ मैं आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा। श्रोताओं, सावन का सुहाना मौसम आजकल अपने पूरे रंग में है। कहीं रिमझिम फुहारें धरती को हरियाली की नई चादर ओढ़ा रही हैं, तो कहीं काले काले घने बादल आसमान को घेरे हुए हैं। साथियों, बरसात का ये मौसम अपने साथ ठंडी ठंडी हवाएं, हरियाली और रिमझिम बूंदों की सौगात लेकर आता है। लेकिन इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही परेशानी का कारण भी बन सकती है, इसलिए घर से निकलते समय मौसम का हाल जरूर जान लें। छाता या रेनकोट अपने साथ जरूर रखें और खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बच्चों को फिसलन वाली जगहों पर संभल कर चढ़ने की सलाह दी जाए और साथ ही जल भराव वाले रास्तों पर जाने से बचना चाहिए। श्रोताओं, स्कूल जाने वाले बच्चों से हमारा विशेष अनुरोध है कि सड़क पार करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, भीगे हुए रास्तों पर दौड़ने से बचें और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या सुरक्षित स्थान से ही सड़क पार करें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, इस मौसम में अक्सर बैक्टीरिया हो जाते हैं और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो अच्छा रहेगा कि उबला हुआ या स्वच्छ जो है वो पानी पिया जाए, ताज़ा और गर्म भोजन करें। बेहतर है कि घर का बना खाना खाएं और

0: फास्ट फूड आदि खाने से बचें, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य ही श्रोताओं हमारे उत्तम जीवन का मूल मंत्र होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, आज है 6 अगस्त और हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है, शिशु के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता। ये बात तो सभी लोग जानते ही हैं। और श्रोताओं, ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और उसे कई तरह के संक्रमण से भी बचाता है। तो आइए श्रोताओं, विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि माताओं को सही जानकारी, सहयोग और सम्मान दें, ताकि हर नवजात शिशु को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत मिल सके।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो आज की तिथि यानी 6 अगस्त का इतिहास बन गई। शुरुआत आज के दिन यानी 6 अगस्त 1945 के दिन हुई एक भयंकर दुखद त्रासदी से करते हैं। श्रोताओं, ये दुखद हादसा हुआ था जापान के एक शहर हिरोशिमा में। 6 अगस्त को पूरी दुनिया हिरोशिमा दिवस के रूप में याद करती है। साल 1945 में इसी दिन हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था और इस त्रासदी में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था और श्रोताओं, अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई थी। और मानव इतिहास ने युद्ध की सबसे भयावह घटनाओं में से एक इस घटना को साल 1945 में देखा था। श्रोताओं, हिरोशिमा दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए गंभीर चेतावनी भी है कि युद्ध और हिंसा का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण, विकास और शांति के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। और श्रोताओं, आज ही के दिन साल 1926 में अमेरिकी तैराक गर्ट्रूड एड्रेले ने इंग्लिश चैनल पार करके इतिहास रचा था। उन्होंने फ्रांस से इंग्लैंड तक लगभग 34 किलोमीटर की दूरी करीब 14 घंटे 31 मिनट में पूरी की थी और वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई थी। और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 6 अगस्त 1959 में उत्तर प्रदेश के बागपत में जन्म हुआ था राजेंद्र सिंह का। आपके भारत में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण आपको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। साल 1985 में राजस्थान के अलवर जिले में आपने वर्षा जल संचयन, जोड़े के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का अभियान शुरू किया। साल 2015 में राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम वाटर प्राइज और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, 6 अगस्त 1933 को भारतीय क्रिकेटर एजी कृपाल सिंह का जन्म हुआ था और उनका जन्म हुआ था भारत के मद्रास में। दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज कृपाल सिंह ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। और श्रोताओं, 6 अगस्त 1982 में भारत के सुप्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार एस के पोटेकाट का निधन हो गया था। और श्रोताओं, साल 2014 से 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रही वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। विदेश मंत्री रहते हुए आपने दुनिया भर में फंसे भारतीयों की मदद कर जनसेवा की एक नई मिसाल कायम की थी। सुषमा स्वराज अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और संवेदनशील नेतृत्व के लिए हमेशा याद की जाती हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब मिलकर भारत की इस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। आइए श्रोताओं, आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं आज के समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों से। शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से। क्या कहता है दैनिक जागरण? पहली खबर है, मेटा प्रमुख जुकरबर्ग ने पीएम की पोस्ट हटाने के लिए माफी मांगी। फेसबुक, व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण संबंधी कंटेंट के प्रसारित होने, डीप फेक वीडियो के चलने और प्लेटफॉर्म के संचालन में गलतियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को कुछ देर के लिए हटाने के मामले में मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने भारत से माफी मांग ली है। अगली खबर है, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 15 अगस्त से रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा। परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं 15 अगस्त से मुफ्त आवागमन कर सकती हैं। अनुपूरक बजट में महिलाओं के लिए 100 करोड़ रुपए के मंजूर होने के बाद निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। अगली खबर है, अगले वित्त वर्ष में आएंगे प्लास्टिक के नोट। आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी पुष्टि स्वयं आरबीआई गवर्नर ने की है। पॉलीमर नोट एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। इसमें एक मजबूत और लचीला प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल होता है जिस पर नोट की छपाई की जाती है। ये नोट कागजी नोट की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ और जल्दी खराब नहीं होंगे। श्रोताओं, बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की पहली खबर है, मस्क का बेकाबू रॉकेट चांद से टकराया। पिछले साल से अंतरिक्ष में भटक रहा स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा बुधवार को तेज रफ्तार से चंद्रमा से टकरा गया। हालांकि इस टक्कर की आधिकारिक पुष्टि होने में अभी कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कहा है कि यह टक्कर अनजाने में हुई है। अगली खबर है खेल जगत से। रैपिड एवं ब्लिट्ज में शीर्ष पर रहे प्रज्ञा नंदा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञा नंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 में से 12 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता का परिणाम केवल रैपिड वर्ग से तय नहीं होगा, अब 18 ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे जिनके बाद विजेता का फैसला होगा। एक और खबर है, बूढ़ी गंगा के उद्गम का पता लगाए NMCG। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश में बूढ़ी गंगा के उद्गम और उसके पूरे प्रवाह संबंध विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को दाखिल करने का निर्देश दिया है। NGT ने कहा है कि नदी कहां से निकलती है और गंगा या उसी की किसी सहायक नदी में मिलन का इसका पूरा मार्ग क्या है। श्रोताओं, एक और खबर है कि शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का अधियाचन ई पोर्टल पर अपलोड। प्रयागराज से ये खबर है, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने के आसार हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 पदों का अधियाचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अगली खबर है, राम मंदिर में बुजुर्गों और

सुविधाओं को विशेष सुविधा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन को आने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को विशेष सुविधा देगा। इसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन पास के लिए ट्रस्ट से पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर से कुछ ही मिनटों में पास प्राप्त कर सकेंगे। नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। बुजुर्ग अपने साथ एक सहयोगी को भी ले जा सकते हैं। सहयोगी का भी आधार कार्ड देना होगा और 10 मिनट में सुगम दर्शन पास जारी करा दिया जाएगा। और श्रोताओं, ये तो थी आज के अखबारों की कुछ खास खास सुर्खियां। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अपने लिए कुछ पल चुराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तन और मन दोनों को आराम की बहुत जरूरत होती है।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार प्रभात सुनेंगे।
2: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
5: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
4: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
6: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
7: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
4: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्ष

0: में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला धोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश, जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर, गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं, परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती

की परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित हुर्मुज़ जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बुहरान के दौरान आबनाए हुरमुज से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकत दारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत के तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकदूरी से मुतालिक काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबीना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबीना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीये के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं।

0: जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड PSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनजर देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए भी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है, तो बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दिल्ली के बाज़ हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने यह बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खास तौर पर जेरे गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुज से 60 माल बरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निजाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें गैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। डीआरएम
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर छोटी सी बात भी खास लगने लगती है। कभी मुस्कान की तारीफ, कभी आंखों की चमक, तो कभी किसी के फूलों जैसे कोमल रूप की तारीफ। मोहब्बत के इन्हीं नाजुक जज्बातों को शब्दों में पिरोता है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में आपने सुना फिल्म कभी कभी का ये गीत। साहिर लुधियानवी के बोल थे और संगीत था खयाम का।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: चंदन का एहसास।
1: एक बार फिर सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। श्रोताओं, रिश्तों में कभी कभी एक छोटी सी खामोशी भी कई सवाल छोड़ जाती है। जब अपने ही रूट जाएं तो दिल बस यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई। इसी मासूम एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करता है कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत हमने लिया है फिल्म दो कलियां से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत है और संगीत है रवि का।

दो कलियां। इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म शुरुआत से। अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की युगल आवाज़ों में ये गीत है। गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं, सच्चा प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं होता। उसमें समर्पण, विश्वास और साथ निभाने का वादा ही सबसे बड़ी दौलत होता है। जब दिल किसी एक का हो जाए तो हर खुशी और हर एहसास

लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना लता मंगेशकर और अमित की आवाज़ों में। श्रोताओं, इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था आरडी बर्मन का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का ये अंतिम गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म मिली से। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, शब्द रचना योगेश की और संगीत है एसटी बर्मन का।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप ज़िले की हलचल सुनेंगे। आज आप सुनेंगे इटावा और बुलंदशहर ज़िले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित तिवारी का।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2026 को इटावा के नुमाइश पंडाल में शाम 3 बजे पहुंचकर 604 करोड़ रुपए की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित किया।
2: इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूँ, इसकी हृदय से बधाई देता हूँ।
1: इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों लोगों की भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री की योजनाओं और विकास के बारे में सुना। इस मौके पर पुलिस का बड़ा सुरक्षा बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर सदर विधायक सरता भदौरिया, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, मंत्री बेबी रानी मौर्य और जिलाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इटावा के सैफई में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पीएमआर दिवस पर अत्याधुनिक पूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन सुविधा का शुभारंभ किया गया। कुलपति डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इस तकनीक से पुराने और जटिल दर्द से पीड़ित मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को ऑर्थोसिस भी वितरित किए और कहा पुनर्वास का उद्देश्य मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेताओं को स्टेशनरी देकर सम्मानित किया गया। प्रकाश डी पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश ने दिनांक 7 जुलाई 2026 पुलिस लाइन सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम में आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस के साथ सामंजस्य पर निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेल पटरियों की सुरक्षा, रेल नेटवर्क के प्रति शासन मुख्यमंत्री जी डीजीपी महोदय गंभीर हैं। उसी सिलसिले में इटावा पुलिस लाइन में एक वृहद समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच में एक विस्तृत चर्चा हुई। रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के प्रति गंभीर है, रेलवे से जुड़े अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण में है। वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण करने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर जेपीएस राठौर, सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री ने पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बन गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इटावा ने भी उपलब्धि हासिल की है, वन आवरण 12% हो चुका है। मुख्यमंत्री जी आज बीमारू राज्य को हटाकर विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तभी सभी का विकास होगा। इटावा जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में स्थानीय निकायों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एमआरएफ सेंटर, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में एमआरएफ सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की, अवगत कराया कि जनपद में 10 एमआरएफ सेंटर निर्मित है, जिनमें से 8 संचालित है और 2 अभी संचालित नहीं है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जहां कूड़े का अधिक संग्रहण हो रहा है वहां प्राथमिकता के आधार पर एमआरएफ सेंटर स्थापित किए जाएं। उन्होंने सभी एमआरएफ सेंटरों को शीघ्र पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्षा अब तक 145 एमएम होनी चाहिए थी, ऊपर से एल नीनो का प्रभाव पूरे देश में है। वर्षा कम होने की संभावना है और दिखाई भी पड़ रहा है। जुलाई में जो वर्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, थोड़ा पानी गिरा है, उससे किसानों को फायदा है। बासमती चावल का बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र में प्लांटिंग चल रही है। दूसरी ओर सुपर एल नीनो का जो प्रभाव है उसके लिए सरकार और विभाग ने रणनीति बनाई है। किसानों के लिए दलहन तिलहन के एरिया को बढ़ाया जाए, उसकी बुवाई भी समय से संभव हो पाएगी। विभाग के द्वारा मिलेट्स का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश कुमार ने बताया कि
3: विभाग और सरकार ने रणनीति बनाई है किसानों को दलहन तिलहन मिलेट्स एरिया को बढ़ावा जाए, उसकी बुआई भी समय से इस वर्षा के कारण संभव हो पाएगी। विभाग द्वारा जो भी रणनीति बनाई गई है उसमें निःशुल्क मिनी किट वितरण है मिलेट्स का, वर्षा को देखते हुए लगभग 4500 पैकेट हम लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से, लाटरी के माध्यम से दे रहे हैं। दलहन तिलहन में भी निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: संकर बाजरा और संकर मक्का भी 50% अनुदान पर बांट रहे हैं। अधिक से अधिक किसान कम वर्षा को देखते हुए इन्हीं फसलों की बुवाई करें। जनपद में 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आपदा की विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मृत्यु हुई। आपदा विभाग ने मृतकों के परिजनों को 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि वितरित की है।

0: आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि सबसे अधिक 14 लोगों की मौत नदी और तालाबों में डूबने से हुई। इनके परिजनों को 56 लाख रुपए की राहत सहायता दी गई। इसके अलावा आंधी तूफान में 3 लोग, सर्पदंश से 2 लोग और आकाशीय विद्युत गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हुई। इन सभी मामलों में नियमानुसार मुआवजा राशि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनी ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए पहले से ही कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। वर्तमान में सदर तहसील के बड़पुरा क्षेत्र में 13 स्थानों पर बाढ़ चौकियां और बाढ़ राहत शिविर तैयार किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया,
1: बाढ़ की तैयारियां हम पूर्व से ही कर रहे थे। वर्तमान समय में हमारे पास तहसील सदर में 13 लोकेशंस पर हमारी बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत शिविर तैयार है। तहसील चकरनगर में भी जो गाँव प्रभावित होते हैं उन पर सेक्टर के माध्यम से हमने जो निर्धारित हमारे जो ऐसे स्पॉट रहते हैं जो ऊंचे स्थानों पर है वहाँ 14 लोकेशंस पर बाढ़ राहत चौकी स्थापित की गई है।
0: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर में स्थित कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 1077 एक्टिव कर दिया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिली है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
2: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
3: बीते दिनों बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे के दौरान शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों, अभिभावकों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इसके बाद वह बुलंदशहर पहुँचे जहाँ उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों की 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे बुलंदशहर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र के किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेवर में केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एयर कार्गो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुलंदशहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तथा बुलंदशहर के लिए रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर तहसील में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को 2027 के चुनाव को लेकर जागरूक किया। वहीं राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले, विपक्ष कभी नहीं चाहता था राम मंदिर बने।
4: सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति कैसे लोगों के मन में विश्वास समाप्त, ये विपक्ष का एजेंडा। उसने हमेशा राम मंदिर ना बने इसका प्रयास किया।
3: बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए और कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए की जा रही तैयारियों का आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद गोस्वामी, डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और SSP दिनेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए जायजा भी लिया गया। 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर DM ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक की। जिले के अनुप शहर में स्थित LDAV इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांवड़ यात्रा को संपन्न कराए जाने के लिए पूरे जनपद को जोनल एवं सेक्टर में विभाजित करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीते दिनों SSP ने 59 पुलिस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का लगातार भ्रमण करेंगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में एडिशनल SP व CO रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे। SSP ने बताया कि
5: जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जाकर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहां से गुजरने वाले कावड़ियों को का मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहां पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहां पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। और इसी क्रम में जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ।
3: कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। डीएमएसएसपी एएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल पर एक्सेस रहेगा। जनपद के 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग पूरी हो चुकी है जिनमें बिजली, गोताखोर, नाव और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था भी वहां की गई है। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी की कई कंपनियां तैनात रहेंगी। पीएसी के गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे का भी उपयोग ट्रैफिक डायवर्जन से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहने वाली है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: जिले की हलचल समाप्त हुई।
7: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आप सुन रहे हैं सारिका श्रीवास्तव और गीता पंत के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सारिका श्रीवास्तव और गीता पंत के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज हमारे श्रोता सुन रहे हैं शारिका श्रीवास्तव और गीता पंत के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

0: प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपको पता ही है कि ये प्रोग्राम जो है ये आप ही के व्हाट्सएप मैसेज और आप ही के पत्रों का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी फरमाइश के गीत सुनने के लिए आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमें अपनी फरमाइश का कोई गीत और अपने नाम और पते के साथ लिखकर भेज सकते हैं, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
0: और दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, इस नंबर पर आपको अपनी फरमाइश भेजनी है 9457078288। इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश और व्हाट्सएप मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं और अपनी फरमाइश का कोई सा भी गीत हमें बता सकते हैं और हम आपको सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए ये कारवा शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पत्र आए हैं आप सबके फरमाइशों से भरे हुए, तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का एक पत्र आया है आपकी फरमाइश को लेकर, और इसी गीत की फरमाइश है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर की। साथ ही हमारे पास और फरमाइश आई है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल की, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। साथ में फरमाइश भेजने वालों में हमारे पास एक पत्र आया है जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश और इनकी माताजी का। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा।
1: और ये गीत हमने लिया है फिल्म निगाहें से मोहम्मद अजीज की आवाजों में, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

निगाहें फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं ने सुना मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। और श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले थे मुकेश कश्यप, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले ये ज़रूरी संदेश।

0: आप सबका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। तो श्रोताओं, जानते हैं आप सबकी फरमाइश किस किस की आई है। श्रोताओं, आप सब में कुर्मा जांजगीर चांबा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी दीक्षांत मिरी ने ख्वाहिश भेजी है और साथ में हमारे पास भेजी है।
1: श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से। लिखने वाले हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। और ये अगला मैसेज हमें मिला है
0: पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बैन शाह और राजेंद्र जी शाह का।
1: और ये मैसेज हमें मिला है किशोर नगर अमरावती से हीरावन शेंडे सिद्धार्थ गोंडाने का। और ये एक और मैसेज हमारे पास आया है
0: छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश का, राशि राजेश का और श्रीमती शीतल राजेश का।
1: चंडीगढ़ सिटी से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। मनाली हिमाचल से हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई और इनके सभी साथी।
0: ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे पास मैसेज आया है गोविंद वैष्णव दिव्या का, सुमन कोमल परी और कृतिका रमेश चंद्र डांगी।
1: और श्रोताओं, फिल्म का नाम है और प्यार हो गया। इस फिल्म के गीत की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बास और पूरा अब्बासी परिवार। और ये अगला मैसेज हमें मिला है
0: इसी गीत की फरमाइश भेजने वालों में है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय और श्रीमती रोशनी राय का।
1: अगला मैसेज हमें मिला है मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी का और इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है।
0: ग्राम गधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम, मधु, गोविंद, सिमरन, वंशिका, रमन और दिव्या गिरी का।
1: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म और प्यार हो गया का ये गीत। उदित नारायण की आवाज में ये गीत है, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत है नुसरत फतेह अली खान का।

0: दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है फरमाइश का, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, हम हस मुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल। और साथ में हमारे पास मैसेज भेजने वाले हैं पूरा खुशदिल परिवार, ये हमसे एक गाना सुनना चाहते हैं हमारे ही पसंद का। और साथ में हमारे पास मैसेज आया है,
1: ये पत्र हमें मिला है बोर्डसरा नैला से, प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू का। अगला मैसेज हमारे पास आया है वडिंगखेड़ा पंजाब से, लिखने वाले हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती आरोही और आरती अरोड़ा।
0: टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हमारे पास मैसेज आया अशोक श्याम कुंवर का, प्रमिला, चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर का।
1: एक और मैसेज हमारे पास आया है बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और पूरा नारंग परिवार।
0: प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से हमारे पास मैसेज आया है डॉक्टर सुरेश जाधव का, अनीता, आरती, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी जाधव और इनका समस्त जाधव परिवार।
1: सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा और माया देवी वर्मा, साथ में है राहुल कुमार वर्मा, विमिनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। अगला मैसेज हमें मिला है श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से, डॉक्टर अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार का।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना का। और साथ में हैं
1: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जैतेक बिरग और मीका बिरग। आइए श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और ये कार्यक्रम आप लाइव सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमें अपनी फरमाइश भेजने के लिए हम अपना नंबर आपको बता ही चुके हैं। एक बार फिर नंबर हमारा नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी फरमाइश का कोई भी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल हैं और संगीत है शांतनु मोइत्रा का। और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू असद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। और श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से। लिखने वाले हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम। अगला मैसेज हमें आया है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से। रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार।
1: साथ ही हमारे पास फरमाइश आई है गीत की गांव लोहगढ़ ठाकुराम वाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविरा सिंह का।
0: अगला मैसेज हमें मिला है सलार पहलगाम कश्मीर से। लिखने वाले हैं, इन्होंने अपना नाम हमारे पास नहीं भेजा है। चलिए, आपका मैसेज शामिल हो गया। अगली बार आप मैसेज करें तो अपने पूरे नाम और अपने परिवार वालों के नाम के साथ मैसेज कीजिएगा। अगला मैसेज है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से। सोपान ताड़े, तुषार करांगले, जिंगा विदर्भ से हैं, वसंतराव भोजने और पी एस नवाकर। श्रोताओं, एक और मैसेज हमारे पास आया है
1: असलाम मुलई काम जी से। फाजिल का पंजाब भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टीवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक, समस खेड़ा परिवार।
0: इसी गीत की फरमाइश के साथ हमें मैसेज किया है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराव, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। श्रोताओं, एक और मैसेज हमारे पास आया है हितेंद्र दास का। ये लिख रहे हैं हमें मैसेज आसाम से। और एक और मैसेज हमारे पास है
1: गांव हिपर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी का, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख का।
0: कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं आप ही की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

0: लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है,
1: हमारे पास इस गीत की फरमाइश आई है कोहका भिलाई से, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल की। साथ में धमदा गांव सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिखा, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का।
0: अगला मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरोनिशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसी, पलक लुबना और यश मंसूरी का। अगला मैसेज हमें मिला है खमरिया छत्तीसगढ़ से, साबिर खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का।
1: अगला मैसेज हमारे पास आया है झज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीता, रजत, मयंक भाटिया का। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव।

0: छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का।
1: एक और मैसेज हमारे पास आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का। भाटापरा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी।
0: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे पास मैसेज आया है मोहम्मद वकार फरीदी का। मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का।
1: हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी हमें मैसेज कर रहे हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से।
0: पांकोड़ झारखंड से हमारे पर मैसेज आया है उत्तम कुमार भगत का। श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का।
1: श्रोताओं एक और मैसेज हमारे पास आया है इसी गीत की फरमाइश के साथ। ये है सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल मस्जिद मध्य प्रदेश से बेबी शालिया खत्री, बेबी हलीमा खत्री, बेबी जिक्रा खत्री परदेसी पूरा खंडवा से हैं शेख सईद राही और अनस भाई राही। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन और इनका पूरा मोहसिन परिवार। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमें मैसेज कर रहे हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद सारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी। आइए श्रोताओं सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत, पलक मुच्छल और मोहम्मद इरफान और दर्शन रावल की आवाज़ में ये गीत है। और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है।
1: दोस्तों, हमारे पास इस गीत की फरमाइश आई है गाँव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से। राजू टुटेजा खुशदिल, उर्मिला टुटेजा गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी करणपुरी इस्माइल टुटेजा।
0: अगला मैसेज हमें मिला है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेशु भूषण संस्कृति और पौरुष का।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास मैसेज भेजने वालों के नाम हैं मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून।
0: ताज मोहम्मद अंसारी मोहम्मद गुलाम साबिर राही और मेराज जहां हमें मैसेज कर रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: मुल्ला हलवाइन शेरकोट से। दोस्तों, ये दोबारा आया है, मैसेज हम पढ़ चुके हैं। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला और सम ईरा आजमीन गुड़िया ने भेजा है हमारे पास मैसेज। और ग्राम लोहगढ़ ठाकुराम वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह शुभदीप

0: सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह ने मैसेज भेजा है।
1: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
0: फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से हमारे पास मैसेज भेजने वालों के नाम हैं योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका, सुशांत और दोस्त उनके दोस्त सुरेश चौरसिया।
1: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।
0: ग्राम भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद।
1: नांगल सोती जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद असलम पेंटर और मोहम्मद उजैफ खान। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह और इनके सभी साथी।
0: दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नौखेलाल वर्मा का।
1: जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश के साथ हमारे पास मैसेज आया है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। ये मैसेज है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा।
0: साथ में हमारे पास मैसेज आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना हीरामण, किशोर, हिम्मत राव, संजय कुमार गेडाम, राजेंद्र गुप्ता और दीपक कुम्हाड़े का।
1: आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोता दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है गीत संगीत के इस मनोरंजक कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। दोस्तों आप सब हमें मैसेजेस करते हैं और खत लिखते हैं, ये हमारे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का काम करता है और हमको ये पता चलता है कि आप हमसे कितने प्यार के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे सारे कार्यक्रम जो भी आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं, इसी प्यार के साथ सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं और ये मैसेज हमारे पास आया है अपनी गीत की फरमाइश लेकर गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत का, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का, और साथ में हमारे पास मैसेज है
8: अगला मैसेज हमें मिला है महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदौस काकू अब्दुल अंसारी, हुमैरा, हिफ्जा, जिक्रा, हबीबा, हलीमा, हसन और इनके सभी साथियों का। और इन्होंने अपना एड्रेस हमें नहीं लिखा है। अगला मैसेज है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना, नदीम, ममता, पूनम कुमारी और कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखर।

0: परवीन। साथ में हमारे पास मैसेज आया धनौरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का।
1: तो आइए श्रोता, आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत जो हमने लिया है फिल्म दिल है के मानता नहीं से। आवाज अनुराधा पौड़वाल की है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का दिलचस्प कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र पारुल गोयल और आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम में। आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

श्रोताओं, अभी आप आयुष्मान खुराना का गाया हुआ फिल्म विकी डोनर से लिया गया था ये सुन रहे थे। संगीत निर्देशन और शब्द रचना थी आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाज है आतिफ असलम की, संगीत से सवारा है प्रीतम ने और गीतकार हैं आशीष पांडे।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म प्रेम मेरे ब्रदर की दुल्हन से लिया गया ये खूबसूरत सा नगमा। आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की, संगीत से सवारा है सोहेल सेन ने और शब्द रचना है इरशाद कामिल की।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म आशिकी 2 से लिया गया ये खूबसूरत सा नगमा। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन और शब्द रचना है मिथुन की।

सुनते हैं अरिजीत सिंह की शानदार आवाज में गाया गया ये यंगिस्तान फिल्म का गीत। संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने और गीत लिखा है कौसर मुनीर ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म सिंग इज किंग से। युगल आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की, संगीत से सवारा है प्रीतम ने और गीत को बोल दिए हैं मयूर पुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है मां महामाया चौक मेघापारा लोर।

छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपने

0: बचपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट, फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
6: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
6: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
2: जी जी चलो चलो देखते हैं।
6: चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की जय।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहाँ भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।

0: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है
1: जी।
0: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
2: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है
0: जी,
2: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
0: बहुत सुंदर मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो

0: पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे, चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक है, आई पसंद। और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। लो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
4: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा

0: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
1: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
0: खेल लो प्लीज।
1: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
0: प्लीज
1: नहीं।
0: ठीक है, फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
1: ठीक है जाओ।
2: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
3: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल फूल फिर से, वाह। तोते तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
4: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
3: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते कितने सुंदर हैं।
4: अरे सुन तो,
3: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
4: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
5: एक बार देखे तुमने?
4: हाँ।
5: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, वो बहुत खुश रहती है।
4: सही कहते हो आप।
5: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
2: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
6: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रात्रि 9:30 पर समय रहेगा कंट्री वाइड इनसाइट्स का कार्यक्रम। संसद समीक्षा का समय रहेगा आज रात्रि 8 बजे। श्रोताओं, आपको ये सब बता दें कि ये तीनों कार्यक्रम ही हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाए।

आज शाम 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर विपिन कुमार राठी से अंकित कुमार की भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय रहेगा बकरी में PPR रोग, कारण, लक्षण और उपाय। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनोहर चौमोली मनु का लिखा नाटक मुक्ति।

आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राशिद बदर साबरी और साथियों की आवाज में गाई कव्वालियां। युवा दोस्तों के दैनिक कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज और लव स्टोरी। साथ ही आप सुनेंगे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कार्यक्रम।

युवा दोस्तों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा आज शाम 5:15 पर और संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 4:00। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर एक ही संगीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जाने माने संगीतकार विशाल भारद्वाज की। दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोविंद सिंह शिग्याल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। 1:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम महिला जगत का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुनेंगे 12:30 पर और अब से बस कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर लेकर देश की हिफाजत को अपना धन बना लिया। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लक्ष्य से। आवाजें हैं सोनू निगम, शंकर महादेवन और साथियों की। संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने और शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

आइए सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं फिल्म उपकार का ये गीत। युगल आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की, गीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और संगीत से सवारा है गुलशन बावरा ने।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गीत और संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आइए सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं फिल्म शहीद का ये खूबसूरत सा गीत। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और साथी, संगीत और गीत लिखा है प्रेम धवन ने।

आइए सुनते हैं अब फिल्म क्रांति से लिया गया ये शानदार गीत, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को बोल दिए हैं संतोष आनंद ने।

सैनिक भाइयों, आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि शौर्य और साहस का तू चंदन है, शौर्य और साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे गीत संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोता दोस्तों, गीत संगीत के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म तीसरी मंजिल से। युगल आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने और गीत को बोल दिए हैं मजरूहा सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ली गई ये गीत। युगल आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने और गीत को बोल दिए हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं गीत संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आइए अब सुनते हैं फिल्म कुदरत से लिया गया ये गीत। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत बद्ध किया है आर डी बर्मन ने और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की।

श्रोता दोस्तों, अब जब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ में है। फिल्म का नाम है मंजिल, संगीत बद्ध किया है आर डी बर्मन ने और गीत लिखा है योगेश ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता से लिया गया ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की।

फिल्म पाकीज़ा से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने और गीत को बोल दिए हैं कमल अमरोही ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार।

0: लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले

0: के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। द लोक सभा हैज बीन adjourned टिल 2 PM फॉलोइंग ऑपोजिशन ruckus ओवर सेवरल इश्यूज including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the lower house paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on the issue. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings, which provides every member an opportunity to raise issues. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said his ministry has advised states to develop a coordinated grid system to ensure adequate medical preparedness, necessary precautions and timely evacuation facilities in case of emergencies. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the house till 2:15 p.m. BJP MP and Chairperson of the Parliamentary Standing Committee on

0: Communications and Information Technology Nishikant Dubey has termed Meta CEO Mark Zuckerberg's apology a victory for India's laws, constitution and parliament. Talking to reporters at parliament premises, he said it demonstrates that anyone wishing to do business in India must abide by Indian law.
1: This is a victory for India's laws, constitution and parliament. It demonstrates the strength of the Prime Minister who leads 140 crore people that anyone wishing to do business in India must abide by the Indian law.
0: The Supreme Court today refused to further relax the bail conditions of Ashish Mishra, the prime accused in the 2021 Lakhimpur Kheri violence case. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Jaimala Bagchi and V. Mohana dismissed Mishra's application seeking relaxation of his bail conditions. The counsel for Mishra said due to the existing restrictions, he is unable to attend family functions, including his daughter's birthday celebrations. The CJI dismissed the application, saying there is no ground to entertain this prayer at this stage. The violence occurred on the 3rd of October 2021 in the Kunia village of Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri district, where 8 people, including 4 farmers, were killed. BRICS Waves Bazaar, a premier international marketplace for the creative economy, kicked off in Mumbai today. The event brings together over 500 delegates from BRICS member and partner countries. Maharashtra Cultural Affairs Minister Ashish Shelar, Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar and others inaugurated the two-day program. Flood conditions in Odisha continue to improve as water levels in all major rivers, including the Mahanadi, have receded. However, fresh heavy rainfall has caused widespread waterlogging in Bhubaneswar. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. And with that, we end this news bulletin.
2: अब आप शाइस्ता वानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डी नोटिफाइड खानाबदोश और नीम खानाबदोश कबायल के नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर नुमाइंदों से उत्तर प्रदेश खानाबदोश तरक्याती बोर्ड के कायम के फैसले पर जनाब योगी का शुक्रिया अदा किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से समाज के हर तबके की तरक्की हुई है। डबल इंजन वाली हुकूमत ने उनको मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद फराहम किए हैं। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का मानसून इजलास कल गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कब्रजी अपोजिशन की जानिब से हंगामा आ रही और नारेबाजी के दरमियान जिमनी बजट असेंबली मंजूर कर लिया गया। संभल तशद्दुद की रिपोर्ट भी कल ऐवान में पेश की गई। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत मुखालिफ करार दिया। ऐवान के बाहर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिमनी बजट पेश किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मनफी रवैये की वजह से पार्टी ने ऐवान में नौजवानों, किसानों, खवातीन की खुद इन्हिसारी या गरीबों के लिए दीगर फलाही स्कीमों पर बहस करने से रोक दिया। ये रवैया गैर आइनी, नौजवान मुखालिफ, किसान मुखालिफ, खवातीन मुखालिफ और गरीब मुखालिफ है। दूसरी जानब उत्तर प्रदेश तखसीस 2026-27 का जिमनी बिल कल कानून साज काउंसिल में मंजूर किया गया। दरअसना कल कानून साज काउंसिल में 12 बिल मंजूर किए, जिनमें उत्तर प्रदेश तखसीस 2026-27 जिमनी बिल, 2026 उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड तरमीमी बिल 2026 और उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2026 शामिल है। उत्तर प्रदेश के काबीना ने प्रयागराज चित्रकूट इलाकाई तरक्याती अथॉरिटी के कयाम को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 23,000 मरबा किलोमीटर पर फैले इस तरक्याती इलाके में 6 अजला शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल मरकज बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को मजहबी सियाहत के लिए और बुंदेलखंड के गेटवे के तौर पर तैयार किया जाएगा। कौशाम्बी को बुद्ध सियाहती मरकज, फतेहपुर को जरिए तजारती मरकज और बांदा को बुंदेलखंड के इकतसादी मरकज के तौर पर तैयार किया जाएगा। हमीरपुर और महोबा को भी मजहबी और सनती तरक्की के मराकज के तौर पर तैयार करने का मंसूबा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क के टूटने मुलविस मेंटेनेंस कंपनी और अहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की है। लखनऊ में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनएचएआई के इलाकाई अफसर गौतम विशाल ने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर और निगरानी में पाई जाने वाली खामियों के लिए जिम्मेदार तमाम फरीकों के लिए जवाबदेही तय की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हमने मामले की छानबीन की और कंसल्टेंट के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की। कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में NHAI के इलाकाई अफसर गौतम विशाल ने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर और निगरानी में पाई जाने वाली खामियों के लिए जिम्मेदार तमाम फरीकों के लिए जवाबदेही तय की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट इदारा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 950 मिलियन वोटर वाले मुल्क में आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इंतकाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल देर शाम आगरा मुनक्किद नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के 78वीं यौम तासीस की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। बलिया जिला की रसड़ा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले बहुजन समाज पार्टी के MLA उमाशंकर सिंह का कल शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वो काफी अरसे से बीमार थे। असेंबली स्पीकर सतीश महाना, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी के कौमी सदर मायावती और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव समेत कई सीनियर लीडरों ने BSP MLA की मौत पर ताजियत का इजहार किया है। प्रतापगढ़ जिले में सिटी पुलिस स्टेशन के तहत माहौली मंडी करीब वक्फे से बारिश की वजह से आज सुबह तकरीबन 3 बजे खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर एक ही खानदान के 6 अफराद जा बह हो गए। इत्तला मिलते ही जिला पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे और पुलिस सुपरिटेंडेंट दीपक भूकर ने जायवाकू का दौरा किया। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 2 घंटे ज्यादा जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 6 लोगों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टरों ने उन तमाम को मुर्दा करार दिया। हादसे में खानदान के सिर्फ एक फर्द बच गया है। मकान तकरीबन 100 साल पुराना बताया जाता। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में हादसे पर गम का इजहार किया है। लखनऊ में सुबह से हो रही बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज समेत कई अजला में गरज चमक, तेज हवाएं और हल्की से दरमियानी कभी कभी भारी बारिश की तवक्को है। ये पेशेनगोई मौसमियाती मरकज लखनऊ ने जारी की है। डॉक्टर SN चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के माहिर मौसमियात सुनील पांडे ने बताया कि मानसून इस वक्त सरगर्म है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तर प्रदेश के 52 अजला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली और झांसी के लिए भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

श्रोता बहनों नमस्कार। सपनों को उड़ान देने वाली परिवार और समाज की शक्ति, हर महिला को समर्पित हमारा विशेष कार्यक्रम। बहनों मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रही हैं महिला जगत, जिसमें हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता, अधिकारों और सभी को प्रेरणा देने वाली ऐसी कहानियां, मिसाल जो हर महिला के लिए मायने रखती है। बहनों प्रेरणा और सकारात्मक सोच से भरपूर आज के महिला जगत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सभी माताओं के लिए बहुत ही खास जो उनके नवजात शिशु के लिए वरदान है, स्तनपान। बहनों जैसे कि स्तनपान सप्ताह चल रहा है जो माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत मायने रखता है। नवजात शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध अमृत के समान माना जाता है जो बच्चे की संपूर्ण पोषण देता है और उसकी रक्षा करता है। बहनों स्तनपान केवल बच्चे को पोषण देने का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह माँ और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। स्तनपान के दौरान माँ के शरीर से जो हार्मोन निकलते हैं वो माँ को मानसिक शांति और सुकून का अनुभव कराने में मदद करते हैं। एक माँ का मानसिक स्वास्थ्य स्तनपान पर बहुत निर्भर करता है, जिससे प्रसव के बाद जो कई बार अवसाद की स्थिति हो जाती है वो तनाव कम होता है। बहनों जब एक माँ मानसिक रूप से स्वस्थ और तनाव मुक्त होती है तो वह अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने शिशु की देखभाल कर पाती है। एक महिला को प्रसव के बाद बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में परिवार का सहयोग, संतुलित आहार और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है जिससे माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। बहनों इस स्तनपान सप्ताह पर हम केवल शिशु के पोषण ही नहीं माँ की मुस्कान, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और बहनों इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।

0: इन संदेशों के बाद फिर से स्वागत है सभी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे क्रम आधी आबादी यानी महिलाओं के संघर्ष और उनकी सफलता को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाता एक ऐसा सेगमेंट जिसे सुनकर मिलती है प्रेरणा, कुछ नया कर गुजरने की चाहत। बहनों, जब हम कभी हिम्मत हार बैठ जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में होते हैं जिनकी वजह से हम एक नई शुरुआत करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ है हमारी आज की आधी आबादी की नायिका नीरू सैनी, जिन्होंने अपने जीवन की सफल यात्रा तब शुरू की जब लोग अपनी जिंदगी से ब्रेक लेकर आराम करने की सोचते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष झेलने के बाद अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट किया। तो बहनों, नीरू सैनी की पूरी जीवन यात्रा को जानने के लिए सुनते हैं हमारा क्रम आधी आबादी। नीरू सैनी पंजाब के बटाला में जन्मी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला हैं, जिन्होंने योग, नृत्य, साइकिलिंग, बाइकिंग, पर्वतारोहण और मैराथन में हिस्सा लेकर अपनी थमी हुई जिंदगी को फिर से शुरू किया। चंडीगढ़ के एक सरकारी संस्थान में विज्ञान की शिक्षिका नीरू सैनी ने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में फिटनेस और एडवेंचर को अपनाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहनों, नीरू सैनी बचपन से ही प्रतिभा की धनी रही हैं। कम उम्र से ही खेलों में उनकी गहरी रुचि थी और वे राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। लेकिन 20 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण खेलों, नृत्य और फिटनेस के प्रति उनका जुनून पीछे छूट गया और उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने परिवार के पालन पोषण में समर्पित कर दिया। बहनों, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। उनकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ उनके पति के गुजर जाने के बाद। जानते हैं नीरू सैनी से उनकी कहानी।
1: मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 20 साल में, और मेरे हस्बैंड ऐसे, हम घर परिवार में, मैं हाउसवाइफ थी, हम रह रहे थे जॉइंट फैमिली में। तो 28 साल की होंगी मैं और दो मेरे पास बच्चियां थी। तो तब हस्बैंड ये न्यूज लेके आए थे कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर्स ने 4 साल दिए, जबकि हमने हर कोशिश की होगी, कोई हर दवाई इंपोर्ट की होगी, हर हकीम और जो भी सब कुछ, सब अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है, तो हमने भी कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। मगर जो डॉक्टर्स ने बोला था 4 साल, वही 4 साल, और 32 साल में मैं अपनी दो बेटियों के साथ में थी, एक 4 साल की और एक 10 साल की। और आई वॉज हाउसवाइफ और प्रदीप जी के पास वो पेंशनेबल जॉब नहीं थी, तो मुझे अब ये देखना था कि मेरे को आगे अपनी जिंदगी में क्या करना है। सो यहाँ से मेरी एक संघर्ष वाली जिंदगी, अगर आप कहो, तो वो स्टार्ट होती है।
0: बहनों, परिवार के मुखिया का चले जाना, घर में आय का कोई साधन ना होना और दो बेटियों का पालन पोषण, जो उनकी पति की इच्छा थी कि उनकी

0: बेटियां पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसके लिए नीरू सैनी ने बहुत परिश्रम किया। उन्हें विश्वास था कि जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है और वे आगे बढ़ती गईं।
1: मगर मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं हारी हुई हूँ। मुझे ये कभी नहीं लगा कि ओह मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैंने करना है, क्या करना है ये नहीं पता था। मगर एक माँ बताऊँ, उसमें जो ताकत है दुनिया के किसी भी इंसान से, किसी भी उससे कहीं कहीं ज्यादा, मैं नीरू इतनी अच्छी नहीं मानती जितनी मैं जब माँ बन जाती हूँ तो मैं दुनिया पलट देती हूँ। तो बस वहां से मुझे पता था कि मैंने बच्चों को अपनी परवरिश देनी है। अपनी स्टार्ट कर दी ट्यूशंस, फिर प्राइवेट स्कूल, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, फिर धीरे धीरे सुबह 3 बजे उठना, अपने लिए पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, फिर शाम को ट्यूशंस करनी। मतलब कि बस मेहनत मेहनत, जिसको कहते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी। जो 15 साल मेरे अपने बच्चों को पालते, उनको पढ़ाते। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड, जो मेरे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उन्होंने मेरे को डेथ बेड से एक दिन पहले बस ऐसे चूली भर के ऐसे बोला था, मेरी फूल सी बच्चियाँ नीरू, इनको पढ़ा देना। सो आई गेव हिम प्रोमिस कि मैं आपके जितना नहीं कर सकती, मेरे को मालूम है, मगर जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी अपनी तरफ से। तो आई केप्ट माई प्रॉमिस, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
0: बहनों, नीरू सैनी ने लगभग 15 वर्षों तक अपना जीवन अपनी बेटियों को समर्पित कर दिया और उन्हें सक्षम बनाया, जैसा कि उनके पति की आखिरी इच्छा थी। समय बीतता गया और उनकी बेटियां विदेश चली गई, तो उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा और वो था अकेलापन, खालीपन, जिससे वो अवसाद की स्थिति में आ गई। लेकिन अब उनकी बेटियों ने उनको संभाला और जीवन में एक नई शुरुआत की। नीरू सैनी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं। उन्होंने खेल कूद, योग, साइकिलिंग और नृत्य को अपनी जीवन शैली में शामिल किया। एक सफल बाइकर बनी, ट्रैकिंग किया और उन्होंने अपनी एडवेंचरस लाइफ को फिर से शुरू किया। बहनों, जानते हैं उनके इस सफर के बारे में।
1: उसके बाद से फिर मैंने अपनी रनिंग और साइकिलिंग, जो मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ये कहाँ से आया कि मैंने अपने बहुत सारे सपने बुने हुए थे, जब मैं 15 साल में एक माँ की जिंदगी जी रही थी, एक टीचर की जिंदगी जी रही थी और नीरू नहीं पता था मुझे, पर तब मैं अपने सपने अपने जैसे पिटारे में डालती जा रही थी, एक एक सपना निकाल रही थी और पूरा कर रही थी। तो रनिंग भी किया, साइकिलिंग यहाँ से शिमला करी, यहाँ से चैल करी और 21 किलोमीटर तक का हाफ मैराथन वगैरह वहां तक पहुंची। इस में से करते करते एक अचानक से सपना आया मेरा कि मैं बाइकर बनना चाहती थी। मैं मोटरसाइकिल बचपन में चाचा जी के पीछे बैठ के बहुत मजा आता था, स्पीड से बड़ा प्यार था मुझे। तो ऐसा लगा कि शायद अभी इस उम्र में तो नहीं हो सकता है, कैसे होगा, मुश्किल है, 50 की हो चुकी हूँ। मेरे सन इन लॉ ने मुझे यहाँ पर बोला, मामा क्यों नहीं, आप कीजिए ना, आप खरीदिए। मैं कहा नहीं, इतने महंगा है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट होंगे तो होने दो, आप नहीं करेंगे तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दैट वाज द ब्यूटी कि मेरी बेटियों ने और मेरे सन इन लॉ ने मुझे इस चीज के लिए पुश किया।
0: बहनों, बाइक सीखने के बाद शुरू हुआ उनके सोलो राइडर बनने का सफर। जानते हैं उन्हीं से उनके इस सफर के बारे में।
1: हाँ, तो मैंने सीख ली 1 महीने के अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा कहीं ट्राई मारनी चाहिए। तो मैंने अपने, तो हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ के पास कसौली है, भुरनी है, तिक्कड़ताल है, तो अकेले अकेले धीरे धीरे चला के जाना, तो देखा कि इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले चला सकती हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में मैंने एक बार मनाली, मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, तो ट्रैकिंग के लिए जाना था श्रीखंड महादेव और भिगु लेक। तो उसमें मैं अपना जो ट्रैकिंग का सामान है अपने बाइक पे लोड करके, आई जस्ट गेव अ ट्राई कि मैं क्या बाइक अकेले मनाली तक ले जाऊंगी। तो 300 किलोमीटर है और मेरे कम से कम 8-9 घंटे लगे होंगे। बड़ी स्मूथ राइड थी मेरी वो उस दिन। सभी को हैरानी हुई थी जब पहली बार सुन के ऐसा देखा कि अच्छा आप फर्स्ट गो में ऐसे मनाली पहुंच गए। यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो शरीर है वो फुल एक्टिव रहना चाहिए और माइंड पूरा स्टेबल रहना चाहिए। तो वो एक्टिविटी मैंने साइकिलिंग से करी थी। साइकिलिंग में यहाँ से शिमला 15 घंटे आप एक गद्दी पे बैठे हुए हो, वहां पर बैठना मुश्किल हो जाता है और पैडल मार रहे हो, जो पैडल नहीं मार रहे हो वो रुक जा रहा है। तो उसके सामने मुझे बाइक लगा, ये तो लग्जरी है, कोई पैडल नहीं मारना, कोई जोर नहीं लगाना, कान घुमाए और वो उड़ रहा है। तो बहुत मजा आया, मैं तो उड़ती हुई मनाली में पहुंच गई। एक दिन का था वो राइड।
2: उसके बाद में इसी तरीके से मैंने नारकंडा भी ट्राई मारा तो मेरी हिम्मत खुलती चली गई। अक्टूबर आया, अभी साल नहीं हुआ था बाइक लिए, और अक्टूबर में मैंने अपना फिर से एक पिटारा खोला और अपना एक सपना निकाला जो मैं जिंदगी में कभी नहीं करा था, कश्मीर जाने का। तो कश्मीर में इसको जन्नत मानते हैं श्रीनगर। आई सेड नो वे, अगर इस उम्र में भी अब मैंने अपने सपने नहीं खोले तो फिर क्या मरने के बाद सपने जीऊंगी।
0: बहनों, नीरू सैनी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जिंदगी से हार मानकर बैठ जाते हैं। नीरू सैनी ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक जिंदगी जो थम सी गई थी उन्होंने उसे एक गति प्रदान की। एक उम्र हो जाने पर जब उन्होंने नृत्य करना शुरू किया तो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग हुई, लोगों ने उनका बहुत अपमान किया और साथ ही बहुत सी आलोचनाओं का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सफर जारी रखा और इन सभी को अपनी ताकत बनाया। बहनों, नीरू सैनी का लक्ष्य, उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बुजुर्ग भारतीयों को फिट रहने और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बताने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बुजुर्ग भारतीय महिलाएं फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। भारत की अन्य महिलाओं को यह एहसास दिलाना कि अपनी पसंद का काम करने में कभी देर नहीं होती, उम्र कोई मायने नहीं रखती, यही है नीरू सैनी का आधी आबादी को संदेश। बहनों, हमारे क्रम आधी आबादी में अभी हम सुन रहे थे हमारी आज की नायिका नीरू सैनी के जीवन के संघर्ष और उनकी एक नई शुरुआत के बारे में, जो मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो जीवन से हार मानकर बैठ जाती हैं। बहनों, कहते हैं कि यदि एक नारी स्वस्थ, जागरूक और सशक्त है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है, स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ नारी। तो बहनों, इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये वार्ता, और जानकारी दे रही हैं श्रीमती कुसुमलता जखमोला।
3: जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर ने इस सृष्टि में मानव को स्त्री और पुरुष के रूप में भेजा है। जीवन रूपी बैलगाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष समान रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तभी जीवन रूपी गाड़ी को चलाना आसान होता है। लेकिन अगर गाड़ी का एक पहिया भी कमजोर या बीमार हो जाता है तो जीवन रूपी गाड़ी को चलाना असंभव हो जाता है और जीवन रूपी गाड़ी रुक जाती है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाती है। नारी इस समाज की सृजन करता है। नारी जन्मदात्री है, नारी पालनहार है, नारी शिक्षक है, नारी गर्मियों की धूप में पेड़ की ठंडी छाया है, नारी सर्दियों की गुनगुनी धूप है, बरसात में छाता है नारी। जितनी भी उपमा अगर दी जाए शायद वह कम पड़ेगी। तभी तो हमारे वेदों में लिखा है, यत्र नारिस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। प्राचीन काल में नारियों को सम्मान व आदर दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय और सभ्यताओं में बदलाव आए और कुछ लोगों के द्वारा महिला को भोग्य और कमतर देखा गया, उसके स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया गया। कहीं तो बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था या जन्म के उपरांत उन्हें मार दिया जाता था। तब सोचो उस माँ पर क्या बीतती होगी और उस बच्ची का क्या कसूर है। खैर, अब तो सरकार ने सर बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। ये 21वीं सदी में है हम, लेकिन फिर भी जैसे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि, फिर भी इस 21वीं सदी में कुछ समाजों और लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, सैन्य आदि सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुकी है, फिर भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार है। नारी अपने सभी दैनिक कार्य पूर्ण रूप से करती है, उसे परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अपनी तरह वह ध्यान नहीं दे पाती है। उसे हर महीने की मासिक धर्म की पीड़ा और दर्द सहन करना पड़ता है, उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, उसे चिड़चिड़ापन और थकान का सामना भी करना पड़ता है। एक महिला के शरीर से ही दूसरा जीवन पैदा होता है, वह भी तो माँ का ही शरीर से बनता है। तब सोचो उसे कितनी ताकत, विटामिन, खनिज, कैल्शियम, प्रोटीन आदि कई तत्वों की आवश्यकता होती है, और हम उसी माँ को, उस जनीन की दशा और मनोदशा को समझ नहीं पाते हैं। कितनी शक्तिशाली है वह माँ। एक महिला इस समाज की नींव की वह मजबूत पत्थर है जिसके ऊपर समाज व राष्ट्र रूपी महल तैयार होता है। वह नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत उस महल की दीवारें होंगी, जिस पर गर्मी, सर्दी, बरसात, बिजली आदि को सहने की शक्ति होगी। एक महिला एक बच्चे को जब जन्म देती हो तो सबसे पहले उसे किन किन कठिनाइयों से गुजरना होता है यह केवल एक महिला ही जान सकती है। जन्म के पश्चात बच्चे की परवरिश, देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि सभी की जिम्मेदारी एक माँ की होती है।

तब सोचे उसे कितनी ताकत और स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। एक महिला दो घरों का नाम रोशन करती है, एक पिता का घर, दूसरा पति का घर। उसे दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। देखो, उसे ईश्वर ने एक कुशल मैनेजर के रूप में भेजा हुआ है और वह अच्छी रूप से उस मैनेजर की भूमिका निभाती है। एक महिला बहन, बेटी, पत्नी, सास, माँ, दादी, नानी आदि की भूमिका निभाती है। कबीरदास जी कहते हैं, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुपला समान। अब बात आती है, एक स्वस्थ नारी कैसी होनी चाहिए, जिसके ऊपर इस स्वस्थ समाज की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ नारी हमेशा प्रफुल्लित, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, स्वस्थ होनी चाहिए। तभी उसका परिवार खुशहाल और स्वस्थ होगा। तभी वह अपने कर्तव्यों का, संबंधों का निर्वहन कर पाएगी। तभी वह समाज के सृजनशीलता में, विकास में अपना योगदान दे पाएगी। स्वस्थ नारी के बिना हम एक स्वस्थ समाज की नींव नहीं रख पाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयू स्रोत सी बहा करो जीवन के इस सुंदर समतल में। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनके कारण वे स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियों का सामना करती हैं। सर्वप्रथम किशोरावस्था में ही प्रवेश करते ही बच्चियों को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। उससे उनमें कमजोरी, चिड़चिड़ापन और ब्लड की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए माँ और घर की बड़ी महिलाओं को उसका ध्यान, साफ सफाई और पोषण का ध्यान रखना होगा। आजकल तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से आयरन, कैल्शियम और विटामिन की गोलियों का वितरण किया जाता है, जिसका लाभ उन्हें उठाना चाहिए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी प्रत्येक बालिका की जानकारी और योजनाओं का प्रचार करने का प्रयास अधिक से अधिक करना चाहिए, ताकि किशोरियां मजबूत हो सके, उनका स्वास्थ्य सही हो सके। दूसरा, गर्भ धारण करने वाली महिला को स्वयं भी विटामिन, खनिज, कैल्शियम और विटामिन लेने की का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ में अगर परिवार और समाज भी साथ दे तो वह और भी अच्छा हो जाता है। गर्भावस्था के लिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ती के माध्यम से पोषक आहार और टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं, जिससे जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। सुरक्षित प्रसव के लिए भी आशा कार्यकर्ती व 108 नंबर की एम्बुलेंस की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक महिला को स्वयं भी जागरूक होना होगा। वह अपने व अपने संतान के प्रति तभी समाज में जागरूकता आएगी, तभी स्वस्थ समाज की नींव मजबूत होगी। प्रसव के दौरान वो पहले महिला को अपने स्वास्थ्य व स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की साफ सफाई, उचित टीकाकरण के द्वारा महिला एक स्वस्थ बच्चे की परवरिश कर सकती है, एक स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकती है। कभी कभार अगर किसी परिवार में लड़ाई, झगड़ा और मारपीट होती है तो उसका असर माँ और बच्चों पर पड़ता है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता, जिससे समाज बहुत प्रभावित होता है। परिवार या समाज अगर पुरुष प्रधान की सोच से प्रभावित है तो उसे उस परिवार में बच्चियों के साथ खान पान और रहन सहन में भेदभाव किया जाता है। बेटों को घी, दूध, फल आदि चीजें दी जाती हैं, लेकिन बेटी को नहीं दिया जाता। इससे उन बच्चों के मन में भी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हम जो है हम स्वस्थ समाज की अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक स्वस्थ समाज होगा। घर की आर्थिक स्थिति यदि कमजोर होती है तो उस परिवार में भरण पोषण भी मुश्किल हो जाता है। तब भी महिलाएं कमजोर हो जाती हैं और उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। परिवार में यदि हिंसात्मक प्रवृत्ति है, उसका प्रभाव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, वो कुंठा से ग्रस्त हो जाती है, उनके मन में उल्टे विचार आ जाते हैं, उनका मन दुखी और परेशान रहता है और उनका स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है। परिणाम उनके व समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। समाज में प्रतिदिन क्लेश ही होता रहेगा, इसलिए महिला को जागरूक होना होगा। उचित पोषण के अभाव के कारण भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक महिला सबसे पहले अपने पति और बच्चों को खाना खिलाती है, लेकिन वह यह नहीं सोचती कि उनसे अधिक दूध, दही, घी, फल, सब्जियों की आवश्यकता उसे है। यदि महिला को उचित पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण वह आगे चलकर कई बीमारियों का शिकार हो सकती है। और यदि महिला गरीब है तो वह आंगनबाड़ी सेंटर से पौष्टिक आहार ले सकती है और जीवन रक्षक दवाइयां ले सकती है। प्रत्येक महिला को मासिक धर्म के दौरान व प्रसव के उपरांत अपनी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने वस्त्रों को डिटॉल या नीम के पानी से धोना चाहिए। आंगनबाड़ी और जन औषधि केंद्रों से जो है सैनिटरी पैड खरीद सकते हैं और उनका उचित निपटान भी करना आवश्यक है। उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है। स्वच्छता का ध्यान रखकर और स्वयं की देखभाल से हम कैंसर और रसौली जैसी कई अन्य बीमारियों से अपने आप को बचा सकती हैं और स्वस्थ समाज में एक अपना योगदान दे सकती हैं। महिलाओं को प्राणायाम, ध्यान, योग, आसनों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांचें करवाना और सरकार द्वारा चले जा रहे

0: टीकाकरण का लाभ उठाना और जांचें करवा कर अपने शरीर की कमी और बीमारियों का पता समय समय पर चल जाता है तो हम गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। किशोरियों और गर्भस्थ महिलाओं के लिए तो जांचें करवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें यह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है जो कि आगे चलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। कुछ भौगोलिक कारण भी हैं जिनके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित और खानपान से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति जो है अलग अलग है। कहीं गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो वहाँ के लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिलता, तो वहाँ अन्न उगाना तो दूर की बात है। ऐसे में वहाँ की महिलाओं को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कहीं बारिश अधिक होती है तो वहाँ की महिलाओं को तब भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो है उनका कारोबार, खेती पाती सब नष्ट हो जाते हैं और इससे उनके सीधे असर जो है महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनका ध्यान अपने परिवार की तरफ ही रहता है, लेकिन वो अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। बीमारी या कुछ होता है तो उस चीज को छिपा देती है, जिसके कारण उन्हें आगे चलकर गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार को अपनी शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सुधार करना होगा। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे ताकि बच्ची किशोरावस्था में आते ही उसे अपने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता की पूरी जानकारी हो, आगे चलकर उसे किसी बीमारी व कुपोषण का शिकार न होना पड़े, क्योंकि उसे ही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कई महान हस्तियों को जन्म देना है जिनके कारण आज समाज उनकी माताओं का ऋणी है। सरकार को रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंधित कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए। महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे समाज में महिलाएं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकती हैं, सशक्त रह सकती हैं। उन्हें अपने अंदर एक खुशी होगी, उन्हें आत्मसम्मान महसूस होगा, तभी वे अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। अब बात आती है कि नारी को स्वस्थ सुखी रखने में यदि महिला का जीवन साथी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसके खान पान का ध्यान रखे और उसकी समय समय पर जांच करवाते रहें, तो महिला तब दुगनी रफ्तार से अपना कार्य करेगी। वह स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी तो उसका परिवार स्वस्थ रहेगा और तभी उसका जीवन एक सार्थक जीवन हो पाएगा। उसका परिवार उसके लिए संपूर्ण तीर्थ बन जाए।
1: स्वस्थ समाज की नींव, स्वस्थ नारी। बहनों, इस विषय पर अभी हम वार्ता सुन रहे थे और वार्ताकार थी श्रीमती कुसुमलता जखमोला। और सच में बहनों, यदि एक नारी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चय ही हमारा समाज भी स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। इसलिए बहनों, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अपना ख्याल रखें। और बहनों, विषय को अब थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि देखिए ना बहनों, मौसम कितना सुहावना हो रहा है। आकाश से मेघ रुक रुक कर बरस रहे हैं और ऐसे मौसम में अगर मधुर संगीत का आनंद लिया जाए तो सोने पे सुहागा। तो बहनों, देर ना करते हुए आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहनों, इसी गीत के साथ हमारा आज का महिला जगत का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारा महिला जगत कार्यक्रम कैसा लगता है। बहनों, यदि आप अपने विचारों और सुझावों से हमें अवगत कराना चाहती हैं, तो आप हमें पत्रों के साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकती हैं। बहनों, मैसेज करने के लिए नोट करें हमारा मोबाइल नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। और बहनों, पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो बहनों, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ, और इसी कामना के साथ कि हमारी सभी बहनें स्वस्थ रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, प्रियंका त्यागी को दें अनुमति आज का महिला जगत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

मीडिया अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोविंद सिंह शिग्याल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं गोविंद श्री ग्याल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

0: houses and damaging household belongings. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Keonjhar and Mayurbhanj districts today and a yellow alert for the remaining districts. Rainfall alerts have also been issued for 20 districts tomorrow, though rainfall activity is expected to decrease over southern and western Odisha. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: On to sports, Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China, from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khaidem Shlema Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under-20 Championships. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashvani se dopahar samachar ke saath main Nikhil Kumar. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित. बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया. अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू. उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट. हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की. और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई. अब समाचार विस्तार से. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई. लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं.
3: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे. इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए. ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है.
2: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया. विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है. विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है. उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली. नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई. इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया. पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है. विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों

0: और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंदा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महेश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
3: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye

0: जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
4: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के

0: श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गीत संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार को सुनने वाले मेरे सभी श्रोता साथियों को आपकी रेडियो साथी पारुल गोयल का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस विलक्षण कलाकार की जिन्होंने संगीत को केवल धुनों तक सीमित नहीं रखा वरन इस संगीत को कहानी का एक जीवंत पात्र बना दिया है। इनके संगीत में लोक धुनों की सादगी है, शास्त्रीय संगीत जैसी गरिमा है और आधुनिक संवेदनाओं की नई उड़ान है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी जगत के महान संगीतकार, निर्देशक, लेखक और गायक विशाल भारद्वाज की। दोस्तों, आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि विशाल भारद्वाज का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर कस्बे में हुआ था। वो समय था 4 अगस्त 1965। इनके पिता राम भारद्वाज एक कवि और गीतकार थे। दोस्तों, विशाल भारद्वाज के जीवन से संबंधित और भी बहुत सारी रोचक बातें हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबका हो जाए थोड़ा सा मनोरंजन और आप सबको सुनवाते हैं विशाल भारद्वाज की संगीतमयी जादूगरी का प्यारा सा उदाहरण, ये गीत फिल्म ओमकारा से। गीतकार हैं गुलजार, आवाज है राहत फतेह अली खांकी।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोता दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार विशाल भारद्वाज की। बचपन से ही इनका साहित्य और संगीत से एक गहरा रिश्ता रहा है। आगे चलकर दिल्ली में पढ़ाई के दौरान संगीत के प्रति इनका झुकाव और बढ़ता गया। कुछ समय बाद इनकी मुलाकात प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार से हुई। यही मुलाकात विशाल भारद्वाज के जीवन का एक अहम पहलू और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की ये जोड़ी फिल्मी दुनिया की अनोखी पहचान बन गई। ऐसी ही जोड़ियां भारतीय फिल्म जगत का स्वर्णिम इतिहास साबित हुई हैं। गुलजार के शब्द और विशाल की धुनें मिलकर एक ऐसा जादू बिखेरती हैं जिसे सुनकर लोगों को बरसों तक अपनी यादों को संजोए रखते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उनकी इसी जादूगरी का नमूना फिल्म इश्किया का ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं गीत संगीत से भरा दिलचस्प कार्यक्रम एक ही संगीतकार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार विशाल भारद्वाज की। इनके संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विशाल कभी भी केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए संगीत नहीं बनाते हैं, वरन उनके गीत और संगीत फिल्म की कहानी की आवश्यकता के अनुसार जन्म लेते हैं। इनकी बनाई धुनों में पंजाब की मिट्टी की खुशबू आती है, तो कहीं राजस्थान की लोक परंपरा दिखाई देती है और कहीं उत्तर भारत की लोक धुन और संस्कृति की छाप दिखाई देती है। श्रोता दोस्तों, यही कारण है कि विशाल भारद्वाज का संगीत सबसे अलग है और सीधे दिल तक पहुंचता है। सन 1996 में आई फिल्म माचिस के संगीत ने विशाल भारद्वाज की कला का परचम पूरे देश में फहरा दिया। इस फिल्म के गीतों में दर्द, संवेदना और कविता का अद्भुत मेल देखने को मिला था। माचिस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। विशाल भारद्वाज को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए अभी तक कुल मिलाकर 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आइए सुनते हैं उनकी गरिमामयी प्रतिभा का नायाब नमूना माचिस फिल्म का ये गीत। युगल आवाजें हरिहरन और सुरेश वाडेकर की, शब्द रचना है गुलजार की।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज विशाल भारद्वाज के जीवन से संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारियों से संबंधित। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत सुंदर संगीत दिया है। माचिस, गॉड मदर, मकड़ी, मकबूल, द ब्लू अम्ब्रेला, ओमकारा, कमीने, इश्किया, हैदर, तलवार, रंगून, पटाखा, खुफिया, फुर्सत जैसी अनेक फिल्मों में अपने संगीत के जादू से इन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का जादू हरिहरन की आवाज में।

दोस्तों, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं फिल्म संगीत के महान कलाकार विशाल भारद्वाज के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से। उनकी हर धुन में भारतीय संस्कृति की खुशबू है, लोक संगीत की आत्मा है और आधुनिक सोच की नई उड़ान है। इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी विशाल भारद्वाज को हमारी ओर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और कीर्तिमय भावी जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। घड़ी की सुइयां हमें और इजाजत नहीं दे रही हैं आपके साथ इसी प्रकार बने रहने की, तो अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आप सभी को पारुल गोयल का प्यार भरा नमस्कार, और चलते चलते आइए सुनते हैं ये मधुर गीत फिल्म मकबूल का, आवाजें हैं दिलेर मेहंदी और राकेश पंडित की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। हमारी दूसरी सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बजने को हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आपसे कुछ ही पलों बाद कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: चार बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्था

वो वादे, वो इरादे, वो कस्में, वो गुजारिश, वो कविता, वो गीत, वो नहर, वो आकाश, वो पहाड़, वो समुद्र, वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल, वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी

0: अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं। यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं? मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स सम समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है। इज दैट द आईडिया?
1: दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं। और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूं कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए। सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तमर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तमर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? व्हेन डिड यू वांट टू कम टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वांटेड टू जॉइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे?
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में, तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा

0: जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
1: पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े. आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स, कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
0: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है। उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही ज़िंदगी है, तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
1: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड.
0: सर्टेनली सर्टेनली।
1: जी
0: एंड हम लोग यूएन जाते हैं, बाहर जाते हैं,
1: जी
0: दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
1: एब्सोल्युटली.
0: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज़ आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
1: क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं. न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं. हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया. खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है इंडियन आर्मी में, आज की डेट में इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
0: बिल्कुल सही है, हम
1: तो
0: ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ
1: जी
0: में सेना बदल रही है।
1: जी
0: दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग,
1: जी
0: तो काफ़ी बदलाव आ रहा है।
1: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
0: हाँ, जब हम 1997 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे। लेकिन उसके बाद, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे
1: तब का
0: थे।
1: नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा.
0: फ़र्क तो हर जगह आया है।
1: जी
0: नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला,
1: ओके
0: बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा।
1: ओके
0: लेकिन लोग जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली
1: जी
0: हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
1: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ, आपकी पोस्टिंग.
0: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की,
1: जी
0: 12 मुला में मैं रहा, तो
1: ओके
0: तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ,
1: ओके
0: बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है। और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर।
1: वाह, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा. मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है.
0: बात ही कुछ हो रहा है, वहाँ के
1: जी
0: लोगों के साथ
1: जी
0: हमने बहुत काम किया, उनके साथ हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं। चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पीस स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
1: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे

0: जज हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म. आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं. जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए.
1: बिल्कुल. और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने.
0: Okay.
1: लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड. आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर.
0: और हमारा
1: यस या ड्रेडेड इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट. सो दैट वे यस. बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है. लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड.
0: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
1: हाँ बिल्कुल. वो तो जरूरी है. लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी.
0: राइट. कुछ बताइए ना वहाँ पे आप, जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो. एंड यू आर सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ.
1: देखिए वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं. मुझे okay. अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के.
0: okay.
1: लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में.
0: okay.
1: जो सूरनकोट में हुआ था. इसके अलावा
0: एलाबोरेट करना चाहेंगे?
1: नहीं. okay. एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना okay. था और वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई. बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी. और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था. और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे.
0: okay.
1: लेकिन इस तरीके के वाक्य मेरे साथ हुए हैं. मैं बच गया. लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है. अपनी जान का बलिदान दिया है. मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस. सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई.
0: यस.
1: बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
0: फॉर द नेशन.
1: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री.
0: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार वर्दी पहनी है अब, बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता.
1: नशा है, जुनून है. एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव.
0: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं.
1: हाँ, पहला नशा
0: जी.
1: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना.
0: एनी स्पेसिफिक रीजन?
1: हाँ, इसका रीजन दो तीन रीजन है. पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर. मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था.
0: हाँ, होता था
1: कश्मीरी गेट के बाहर. तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी. मैं आई थिंक 11th या 12th में था. और वो मुझे याद है वो गाना पूरा. इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड. और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था. तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा. तो आई यूज्ड टू से, मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव.
0: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी. इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में.

0: तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर ओके।
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियां हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियां हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियां हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियां हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज़ नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: Okay.
1: वहां पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस

0: ऑफिसर, उसकी कहानी है। और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं। और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड।
1: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
0: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही जो मैं देखता रहा
1: जी।
0: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
1: जी।
0: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
1: जी।
0: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने

0: हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
1: जी,
0: कुछ कहानियां मैंने तब लिखी जब मैं वहां से वापस आ गया
1: जी,
0: और कुछ कहानियां मैंने वहां पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहां तक फीडबैक का सवाल है, काफी लोगों ने

0: तब मेरा नाम रखा हुआ है।
1: अच्छा क्या रखा हुआ आपका नाम?
0: फाल्कन वन।
1: अच्छा आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फाल्कन वन आया था जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था, तो मैंने कहा ये फाल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है, लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फाल्कन वो सच में काफी खतरनाक था।
0: मेरे एक दोस्त भी हैं आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
1: हाँ वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मजा आएगा।
0: मेरे सामने बैठे हैं टैनी।
1: हाँ मुझे फौज में, हाँ मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
0: आपके भी व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
1: हाँ तो हमारी फौज में एक रिवायत है निकनेम्स की। मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे, तो यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स।
0: ओके
1: शायद हर पेशे में होता होगा लेकिन फौज में कुछ ज्यादा है और ज्यादा अपनापन है। तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है। तो दैट इज हाउ
0: एंड यू एंजॉय इट, वी एंजॉय दीस नेम्स इज़न्ट
1: इट? या बिकॉज़ दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है लोगों की।
0: आदत बन जाती है, एक अपनापन भी होता होगा।
1: एक अपनापन तो है, काफी अपनापन है।
0: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं जैसे टाइगर कॉलिंग बारहसिंघा, बारहसिंघा टू टाइगर, ये सारी चीजें चलती रहती हैं हमारे।
1: हाँ क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
0: जी,
1: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं।
0: ओके
1: तो टाइगर लैम्ब लायन इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
0: ओके
1: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
0: कॉल साइंस यस।
1: तो यस दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस कर देते हैं।
0: ग्लैमरस कर देते हैं जी हाँ। मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मोनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में। द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे। तो हम बताया वो जो 25 या 26 सेकेंड की जो क्लिप है यूट्यूब में जहाँ एयरफोर्स ने टाइगर हिल पर अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे बोले इट वाज टॉमकैट।
1: हाँ एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं
0: जी, जी.
1: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
0: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद।
1: हाँ गुलाम हसन,
0: गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
0: जी.
1: जो कि वहां पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
0: जी.
1: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है
0: okay.
1: और वहां पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है कैप्टन अभिमन्यु कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है। और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज है और दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। बट इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक कहानी है लव जिहाद,
0: उसमें
1: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है और उसी वक्त वहां पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है। तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़े कहानियां, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
0: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी।
1: या आई दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज
0: होता है सर,
1: दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज,
0: इतना कुछ तो होता है सर। मेरे पास बहुत सारे ना एसएमएसस आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
1: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
0: जी. विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं. संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं. अगर आप भी हमारे साथ

0: जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, केवल एसएमएसएस, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वी विल नॉट आस्क दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर, सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं, तो मुझे तभी अंदाजा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको NDA का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और NDA में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SS भी होता है, तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
0: राइट देन, यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप, सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं, इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और नहीं, ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारे
1: और हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूंगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेजे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहां के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, what changes do you see compared to the youngsters in your time?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य अकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था
0: जी।
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं।
0: okay.
1: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून और how well informed they are। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमजोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल यू योरसेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है। और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर एंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसेज एंड नाउ दे आर कमांडिंग।

0: Italians and doing so well. So it's always a pleasure to interact with you.
1: So aapka jo, the process of dealing or teaching them or training them is as tough as your gurus were, or it's gone tougher, or you understand nahi yaar?
0: देखिए ये जो है डिबेट हमेशा रहती है, हमें लगता है कि हमने ज्यादा मुश्किल वक्त झेला है और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूंगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन लेकिन वी आर फ्रॉम द सेम जनरेशन, बट आई थिंक दिस इज एवरीवन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज्यादा मुश्किलें झेली है.
1: ओके, आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड, जो मैं चला चुका हूँ.
0: हाँ, ये कजरारे गाना है. जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स, वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात. तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग.
1: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं और कुछ ताज़ी, उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ रहा है तो आप शेयर करिएगा हमारे साथ. संदेश टू सोल्जर्स, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं.

0: साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कार्की आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं। एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे। एंड ऑफकोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वी विल गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं जो अफसर हैं कभी मुस्कुराते नहीं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं एआईआर मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉब एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी है।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाक्य की पूछ रहे थे
0: जी।
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी।
0: okay.
1: ओपन एयर थिएटर है, बहुत मजेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: okay.
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक डीएस थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए।
0: oh.
1: और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड द इंसिडेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।

0: एंड देन राजकुमार पाल यूपी जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है. हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम. मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूं, लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं. ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें. रामधारी अवाना. और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं. मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर. कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर.
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर. इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई. मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी.
1: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं और पब्लिसाइज भी होती है कई चीजें.
0: ओके,
1: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं.
0: ओके,
1: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रेसिजन वेपन्स आ रहे हैं. इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दी वैल्यू ऑफ नैरेटिव. तो काफी सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए.
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहां पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहां पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, यू नो, कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है, नहीं है. एम आई राइट टू मेंशन लाइक दैट?
1: यस, बिकॉज आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन द वे वी यूज अवर वेपन्स. तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है.
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल से विलेन के पूछूंगा आपसे. 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा.
1: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर.
0: ओके,
1: एंड जहां तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूंगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज द नेशंस विच फाइट ए वॉर. तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए.
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है. कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं. बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री. हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह. तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है.
1: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं. कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये जरूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें. तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है.
0: इज इट इजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग, इट इज डेंजरस, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर?
1: पूछिए, आप टफ सवाल पूछ रहे हैं.
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा. जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनलिटीज आल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी,
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है. सो यू यूज ऑल मींस एट योर डिस्पोजल.
0: राइट, एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है. आपको कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है.
0: आप भी थे?
1: थे नहीं हैं, लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट.
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव. ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चले आ,

0: इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर।
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना।
0: थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना। और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं। हाँ, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर। वो जो लव स्टोरी थी वो

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का व्हाट अबाउट दिस, आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज यू नो एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर, एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार।
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी।
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे
0: ओके।
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आए, चलाया था कि बहुत अच्छा लगता था, पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस, वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए।

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।

0: तो वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको. आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहां अपना दिल भी दिया है कश्मीर को.
1: नहीं दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू एंड कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने एब्रॉड नौकरी की है, यूएन के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा. तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है.
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द यूएस.
1: हाँ हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, okay. मैं यूके गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में. इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग.
0: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है.
1: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं.
0: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर.
1: इट वाज एक्सट्रीमली गुड, एंड The way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया.
0: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar जी, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए सर.
1: Thank you so much. जय हिंद.
0: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में.

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई योजनाओं के विषय में जानकारी लाते हैं जो भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए हमेशा लाभकारी होती है। श्रोताओं, इसी क्रम में आज भी हम आपके लिए लाए हैं महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड यानी SRI फंड और क्रेडिट गारंटी योजना के विषय में जानकारी। श्रोताओं, महिला हर देश की ताकत या हिम्मत मानी जाती है और हमारे देश में तो महिलाओं को बहुत सम्मानजनक पद प्राप्त है। जहां हमेशा से ही नारी को देवी तुल्य माना जाता रहा है, ऐसे में देश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत और इसके तहत विशेष आर्थिक पैकेज और फंड से जुड़े प्रावधानों की शुरुआत 12 मई 2020 को की गई थी। इसी कड़ी में बाद में विभिन्न फंड्स जैसे सेल्फ रिलीफ फंड, इंडिया फंड की घोषणा भी की गई थी। श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत फंड, जिसे मुख्य रूप से सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु

और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता और इक्विटी पूंजी देने के लिए बनाया गया एक फंड है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत और स्थायी बनाना है, ताकि वे बड़े कारपोरेट और वैश्विक स्तर की कंपनियां बन सकें। इस योजना के तहत कुल 50,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया जा रहा है। 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान भारत सरकार द्वारा मदर फंड के रूप में किया गया है। इस फंड का उद्देश्य छोटे उद्योगों को पूंजी प्रदान करना है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों और कंपनियों में परिवर्तित करना, ताकि वे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार ये फंड उन सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योगों को मिलता है जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत आते हैं। वे कंपनियां जो वित्तीय रूप से व्यावसायिक हैं और जिनकी एक स्पष्ट बिजनेस ग्रोथ योजना है, उन्हें इसके तहत इक्विटी फंड के लिए चुना जाता है। इस फंड के द्वारा भारतीय उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने, रिसर्च एवं डेवलपमेंट करने और नए उत्पाद बनाने में वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वे भविष्य में खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा सकें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत फंड के बारे में, और अब बात करते हैं क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में। श्रोताओं, ये योजना भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी सिक्योरिटी या बिना किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को, नए स्टार्टअप्स को बैंकों से लोन दिलवाना है। इस योजना का संचालन मुख्य रूप से CGTSMSE अर्थात क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस द्वारा किया जाता है, जिसे भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय और SIDBI ने मिलकर शुरू किया है। इस योजना के तहत किसी भी व्यापारी या उद्यमी को अपनी जमीन, घर या कोई भी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। योजना के तहत 10 करोड़ तक की अधिकतम सीमा गारंटी कवरेज उपलब्ध है। महिला उद्यमी, SC ST वर्ग के लोगों, उत्तर पूर्वी राज्यों NCR के व्यवसायियों के लिए 85% तक का उच्च गारंटी कवर और फीस में भी

दिया जा सकता है। बैंक द्वारा इस गारंटी सुविधा के बदले एक वर्षीय गारंटी शुल्क भी लिया जाता है, जो लोन राशि के आधार पर 0.37% प्रतिवर्ष से शुरू होता है। ये फीस आमतौर पर लोन की लागत में शामिल होती है। श्रोताओं, इस योजना के विषय में और अधिक जानकारी लेने या इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है।

महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत फंड और क्रेडिट गारंटी योजना के विषय में जानकारी।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 10 बजे सुनिएगा प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आज संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का तीसरा भाग आप सुनेंगे आज। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा विधानमंडल समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किए जाएंगे।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे राशिद बदर साबरी और साथियों की आवाज में चंद कव्वालियां। आज संध्या 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे जैविक खेती और उत्पादन और पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के विषय में चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर विपिन कुमार राठी, जो कि उप चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ हैं, से अंकित कुमार की बातचीत, जिसका विषय रहेगा बकरी में पीपीआर रोग, कारण, लक्षण और निवारण।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनोहर चमोली मनु का लिखा पूर्व प्रसारित नाटक मुक्ति, जिसके निर्देशक होंगे विनय ध्यानी। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के मुख्य आकर्षण होंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट बूस्टर्स, लव स्टोरी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल में हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का समय रहेगा कल रात्रि 9:30। धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे योगेंद्र पाल की गाई चंद रागनिया। कल प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता, जिसमें कल का विषय रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। कल दिन में 12:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें कल आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण का राग भीम पलासी पर विचित्र वीणा वादन। तबले पर आपके साथ संगत करेंगे साबिर हुसैन खान। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कल दिन में 1:45 पर सुनिएगा महेंद्र सिंह चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। कल संध्या 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा हुनरबाज श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली मेहमान पंकज लोचन गोस्वामी से शोभी शर्मा की बातचीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:15 हो रहे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: बारिश की बूंदों का है सुहाना सा पैगाम, संगीत की महफिल में आपको है हमारा दिल से सलाम।
1: रिमझिम फुहारों के संग मुस्कुराइए जरा, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाले हैं बेहद खास और हसीन भरा।
0: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की होस्ट श्रेया विश्वास, और मेरे साथ है।
1: नमस्कार दोस्तों, श्रेया के साथ हूँ मैं आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी।
0: मरियम, आज मौसम भी है सुहाना, फिजाओं में भीगी भीगी सी ताजगी है।
1: और इसी खूबसूरत मौसम को और भी रंगीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम युववाणी।
0: तो चाय की चुस्कियां हो या बारिश की फुहारें,
1: बस हमारे साथ बने रहिए दोस्तों।
0: क्योंकि आज संगीत भी होगा, मुस्कान भी होगी और थोड़ी सी दिमाग की कसरत भी।
1: तो चलिए करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हमारे सेगमेंट बूझो तो जाने से।
0: तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? सवाल एक बार फिर से, विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया?
1: जिसका सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजमाबाद के कमेंट्स में।
0: और जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि संगीत से प्रोग्राम का हर पल रहेगा रंगीन, तो चलिए नॉन फिल्मी चार्टबस्टर से ले आते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: That's all. Thank you so much for listening.
1: जो जंग की आग में जल गए उनकी कहानी कौन सुनेगा,
2: जो खामोश हो गए हमेशा के लिए उनका दर्द कौन बताएगा। दोस्तों, आज है 6 अगस्त, एक ऐसी तारीख जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती।
1: बिल्कुल मरियम, कुछ तारीखें कैलेंडर में सिर्फ तारीख नहीं होती बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना होती है जो हर साल एक सीख दे के जाती है।
2: दोस्तों, बात है 6 अगस्त 1945 की। सुबह का वक्त था, जापान का शहर हिरोशिमा अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी था।
1: बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। दोस्तों, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा।
2: हिरोशिमा दिवस, दोस्तों, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि एक पल की तबाही कितनी पीढ़ियों यानी जनरेशन तक दर्द दे सकती है।
1: मरियम, जब भी हिरोशिमा का नाम आता है सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी याद आ जाती है।
2: दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। कुछ ही पलों में पूरा शहर तबाह हो गया और हजारों लोगों की जान चली गई।
1: और कुछ ही पलों में पूरा शहर धुएं और आग की चपेट में आ गया। कई लोग घायल हुए और आने वाले वर्षों तक रेडिएशन की वजह से गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ा।
2: श्रेयस, सोचो, जिन लोगों ने उस दिन अपने परिवार, अपने घर और अपना पूरा शहर खो दिया, उनके लिए जिंदगी कितनी बदल गई होगी ना।
1: सच कहा मरियम, हिरोशिमा दिवस हमें याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, असली ताकत होती है धैर्य, समझदारी और इंसानियत में।
2: दोस्तों, हिरोशिमा दिवस हमें डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी याद दिलाता है, एक बेहतर, सेफ और पीसफुल दुनिया बनाने की जिम्मेदारी।
1: हिरोशिमा आज भी फिर से एक खूबसूरत और आधुनिक शहर बन चुका है। वहां हर साल 6 अगस्त को पीस मेमोरियल सेरेमनी आयोजित की जाती है। दुनिया भर के लोग वहां आकर शांति का संदेश देते हैं।
2: जंग की राख से खुशियां नहीं खिलती,
1: नफरत से कभी मंजिल नहीं मिलती।
2: आओ ऐसा कल मनाएं
1: जहां हर दिल में मोहब्बत हो
2: और हर सुबह अमन का पैगाम लाएं। और इसी पैगाम के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आइए सुनते हैं हमारा ये सेगमेंट। तो दोस्तों, लेकर आ गए हैं हमारा आज का सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम बात करते हैं उन महान शख्सियत की जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। तो चलिए मरियम, देखते हैं हमारे शहर के लोग अपने इतिहास को कितना याद रखते हैं और चलो बात करना स्टार्ट करें उनसे।
2: बिल्कुल श्रेया, चलते हैं और अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं।
1: चलो मरियम, पहले लिस्टर से जुड़ जाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
3: समीक्षा।
1: ओके, समीक्षा, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना जानना?
3: यस।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो समीक्षा, हमारा एक सेगमेंट है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। तो हम आपको कुछ हिंट देंगे और आपको गेस करना होगा कि हम किन फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं। तो आप तैयार हो?
3: यस। ओके,
2: तो आपका पहला हिंट है समीक्षा, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पश्चिम बंगाल के तामलुक यानी कि मिदनापुर में हुआ था।
1: आप गेस कर पाओगे इससे कि कौन हो सकते हैं ये?
3: नो।
1: ओके ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हिंट देते हैं हम आपको।
2: ये एक महिला थी लेकिन इनकी हिम्मत ना बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं थी।
3: महारानी लक्ष्मीबाई?
2: नहीं समीक्षा, थोड़ा और कोशिश करो।
1: कोई नहीं मरियम, एक और हिंट दे देते हैं।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, चलो एक और हिंट आपके लिए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मार्च भी किया।
3: नहीं, मैं गैस नहीं कर पा रही हूँ।
1: एक आखिरी हिंट देते हैं अब आपको, ठीक है?
2: जब अंग्रेजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब भी उन्होंने तिरंगा नीचे नहीं होने दिया।
3: नहीं पता मुझे।
1: ओके, कोई नहीं कोई नहीं। तो समीक्षा, हम बात कर रहे हैं मदनगिरी हाजरा के बारे में, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा। उनका साहस, देशभक्ति और बलिदान आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। तो अब आपको पता चल गया हम किन की बात कर रहे थे?
3: मदनगिरी हाजरा के बारे में।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच समीक्षा, थैंक यू।
3: वेलकम।
2: तो दोस्तों, सेगमेंट में चलते हैं आगे और जुड़ते हैं अपने अगले लिसनर से और जानते हैं उनसे उनका नाम।
4: वंशिका पाल साहब।
2: वंशिका, तो वंशिका हम आपसे जुड़े

0: अपने सेगमेंट में जिसका नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हम आपको हिंट देंगे और आपको बताना होगा कि हम किस फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं। आप रेडी हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: चले ठीक है। तो वंशिका आपका पहला हिंट है, ये भारत की एक ऐसी वीर महिला थी जिन्होंने उम्र को भी अपनी ताकत के बीच आने नहीं दिया।
1: अहिल्या बाई।
0: काफी स्ट्रॉन्ग गेस कर रही हैं, बट थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। एक और हिंट देते हैं आपको, 69 साल की उम्र में भी वो सबसे आगे थी और आखिरी सांस तक उनके हाथ में तिरंगा था।
2: मदर टेरेसा।
0: नहीं नहीं, चलो एक और हिंट देती हूँ मैं आपको। लोग इन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी यानी बूढ़ी गांधी के नाम से जानते थे। मुझे लग रहा है वंशिका को थोड़ा थोड़ा तो हिंट मिल रहा है ना।
2: मतंगिनी सागरा।
0: वंशिका थोड़ा क्लोज आ गई हैं आप, बस आपने सरनेम थोड़ा गलत कर दिया। जी हाँ, उनका नाम है मतंगिनी हाजरा। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ये जवाब कैसे दिया?
2: वे पहली महिला थी जिन्होंने अपनी जान पर खेल के तिरंगे को झुकने नहीं दिया था, मैंने पढ़ा था बुक में।
0: बहुत अच्छी बात है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है वंशिका। मतंगिनी हाजरा जी की शादी बहुत कम उम्र में एक काफी बड़े, यानी कि इनके जो हस्बैंड थे वो इनसे उम्र में काफी बड़े थे, और कुछ सालों के बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये विधवा हो गई थी, विडो हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी निजी कठिनाइयों के बावजूद भी देश की सेवा का रास्ता चुना था। लोग उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी यानी कि ओल्ड लेडी गांधी भी कहते थे, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन करती थी। वो चरखा चलाती थी, खादी पहनती थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करती थी। वंशिका आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
0: तो चलो मरियम अपने सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और अपने नए साथी से जुड़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
1: अनिका चौधरी।
0: अच्छा अनिका, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपने पढ़ा है भारतीय इतिहास के बारे में?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो और भी अच्छी बात है मरियम कि अगर इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा है तो ये आसानी से जवाब दे देंगे। तुम्हें क्या लगता है?
3: मुझे भी ये लगता है श्रेया कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो शुरू करते हैं।
0: तो चलिए पहला हिंट है, इनके हाथ में तिरंगा था और ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आगे बढ़ रही थी, ये कौन थी? ओके कोई नहीं, आपको एक और हिंट दे देते हैं हम। इन पर कई गोलियां चलाई गई थी लेकिन इन्होंने आखिरी पल तक तिरंगा नहीं छोड़ा था।
1: सॉरी मेरी याद नहीं रहा।
0: ओके कोई नहीं, एक और हिंट दे देते हैं मरियम इन्हें।
3: कोई नहीं,
0: गोली लगने के बाद भी इनके होठों पर वंदे मातरम का नारा था, ये कौन थी?
1: मदनगिनी हाजरा।
0: वेरी वेल, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मदनगिनी हाजरा के बारे में, जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया लेकिन वे हर बार और अधिक जोश के साथ आंदोलन में अड़ी रही। 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 6000 लोग थे उस जुलूस में और वो इनका नेतृत्व कर रही थी, सबसे आगे चल के झंडे को हाथ में लेकर नारा लगा रही थी वंदे मातरम का। गोली लगने के बावजूद उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया और उनका आखिरी शब्द भी वंदे मातरम ही था।
3: तो अनिका आपका जवाब बिल्कुल सही था और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
1: वेलकम।
3: तो दोस्तों आज हमने बात की एक ऐसी वीरांगना की जिन्होंने हमें सिखाया कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती और साहस किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। मतंगिनी हाजरा जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने आदर्शों और अपने देश के लिए अडिग रहना ही सच्ची वीरता है।
0: उनका बलिदान केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आइए हम उनके साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम को हमेशा याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी कहानी जरूर सुनाएं। हमारे साथ इस छोटे से सफर में शामिल होने के लिए हम अपने सभी पार्टिसिपेंट को थैंक यू कहते हैं और इसी के साथ मरियम इसी सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया को साइन ऑफ करते हैं।
4: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की मतंगिनी हाजरा जी के बारे में।
0: जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जब आप अपने देश के लिए खड़े होते हैं तो आपकी उम्र क्या है वो मायने नहीं रखती, पर आपके मन में क्या आप क्या इच्छा लेके खड़े हुए हैं वो मायने रखते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों नॉन फिल्मी चार्टबस्टर के पिटारे से ले आए हैं हम एक और गीत, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: ओए वीरू, क्या हो गया तुझे? क्या सोच रहा है? किस सोच में पड़ा है?
4: अरे यार, सोचने वाली ही तो बात है। तुझे पता है ना, कल रात कितनी तेज आंधी आई थी।
3: हाँ यार, आंधी तो बहुत ही तेज आई थी, लेकिन उसके बारे में तू क्यों सोच रहा है?
4: मैं नहीं सोचूंगा तो तू सोचेगा क्या?
3: मैं तो कह रहा हूँ, तू भी क्यों सोच रहा है?
4: कल रात की आंधी में एक टी शर्ट मेरे घर आकर गिर गई।
3: अरे तो क्या हो गया, इसमें सोचने वाली क्या बात है?
4: अब मैं सोच रहा हूँ कि मैचिंग पैंट लूं या फिर एक और आंधी आने का इंतजार करूं।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: श्रेया, मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त अपनी शाम की चाय का लुत्फ ले रहे होंगे हमारे प्रोग्राम के साथ में।
3: तो मरियम, इस लुत्फ को और बढ़ाया जाए एक लव स्टोरी के साथ।
4: जी हाँ दोस्तों, हाजिर है लव स्टोरी दो शहरों के दरमियान एक मोहब्बत एपिसोड 4।
5: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।

0: में सुना था मयंक और मीरा की प्रेम कहानी का वो मोड़ जहां मयंक के पापा ने मयंक से एक ऐसा राज बताया जिसने मयंक की पूरी दुनिया हिला दी। आखिर क्या था वो राज? क्या मयंक और मीरा की मोहब्बत अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली थी? तो चलिए सुनते हैं आज कौन से इम्तिहान से इनको गुजरना है। मयंक अपने पापा से पूछता है, आप मीरा के खिलाफ क्यों हैं?
1: क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी कभी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी की थी और उस फैसले की कीमत हमने बहुत सालों तक चुकाई है।
0: मयंक ने अपनी माँ की तरफ देखा और थोड़ी देर शांत रहने के बाद दबी आवाज में फिर से कहा,
1: तो क्या आप दोनों चाहते हैं कि मैं भी डरकर अपनी मोहब्बत को छोड़ दूं?
0: तब मयंक के पापा ने बहुत प्यार से जवाब दिया,
1: नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरी गलती को मत दोहराओ।
0: लेकिन आपकी गलती क्या थी?
1: मयंक के पापा फिर बोले और कहा, हमने एक दूसरे को चुना था बेटा, लेकिन शायद एक दूसरे के परिवारों को कभी नहीं समझ पाए।
0: एक लंबी खामोशी के बाद मयंक की आंखों में आंसू थे और उसने अपने पापा से कहा,
1: पापा, मैं और मीरा फैमिली की मर्जी से ही शादी करना चाहते हैं। मैं आप दोनों को फोर्स नहीं कर रहा, पर पापा, ये मीरा के घर का एड्रेस है, अगर आपको सही लगे तो एक बार प्लीज़ वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा।
0: और ये कहकर मयंक वहाँ से चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद मयंक की माँ ने मयंक के पापा से कहा,
1: हमने अपने प्यार के लिए अपना परिवार खो दिया था, लेकिन क्या ज़रूरी है क्या हमारा बेटा भी वही सब कुछ खोए?
0: मयंक के पापा वहाँ से उठकर जाने लगे, पर माँ ने फिर से कहा,
1: कुछ तो बताइए, आपने क्या सोचा है?
0: उन्होंने जाते जाते मुड़कर बस इतना कहा,
1: ठीक है, कल चलते हैं।
0: लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो मयंक को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बात बन गई तो खुद सरप्राइज देंगे और अगर बात नहीं बनी तो कम से कम उसकी उम्मीदों को फिर से टूटते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा। अगले दिन मयंक के पेरेंट्स मीरा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन मयंक को इस बात की कोई खबर नहीं थी और उसके पेरेंट्स ऐसे दरवाजे के आगे खड़े थे जिसके पीछे उसकी मोहब्बत का आखिरी फैसला था। मयंक के पापा दरवाजे की घंटी बजाते हैं, दरवाजा खुलता है और उस तरफ मीरा के पापा खड़े होते हैं। मयंक के पेरेंट्स हाथ जोड़कर कहते हैं,
1: नमस्ते जी।
0: मीरा के पापा भी नमस्ते करते हैं और पूछते हैं,
1: जी आप कौन?
2: हम मयंक के पेरेंट्स हैं।
0: और ये सुनकर मीरा के पापा के चेहरे के इमोशंस बदल जाते हैं। अब आगे मीरा के घर में क्या हुआ, क्या दोनों परिवार एक दूसरे को समझ पाए, क्या मीरा और मयंक को उनकी मोहब्बत की मंजिल मिल गई, ये सारे सवालों के जवाब आपको देने के लिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस प्रेम कहानी के अगले और आखिरी हिस्से में।
3: तो मरियम, इस प्यारी सी लव स्टोरी के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या एक प्यारा सा गीत हो जाए?
4: बिल्कुल श्रेया, मैं तो यही चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो भी जरूर यही सोच रहे होंगे कि इतनी प्यारी लव स्टोरी के बाद में एक प्यार भरा गाना हो जाए तो क्या ही कहने।
3: तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस गीत के बाद हम लिसनर्स के नाम लेने वाले हैं जिन्होंने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: राजू मेरे भाई, आज तुझे एक बहुत बढ़िया बात सी।
2: अरे क्या बात, आज ये इतना टीचर क्यों बना फिर रहा है तू?
3: आज एक शायरी अर्ज करता हूँ।
2: ओहो इरशाद इरशाद।
3: तो शायरी ऐसी है, जो सोवत है सो खोवत है,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है,
2: हाँ हाँ जो जागत है,
3: जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है, वो कौन सा पहाड़ खोदत है, मोबाइल ही तो चलावत है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया था, विम्बलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया था। सही जवाब देने वाले लिसनर्स के नाम पढ़ने से पहले क्यों ना सही जवाब बता दे सबको, क्यों मरियम?
2: बिल्कुल श्रेया, बता दूं हमारे दोस्तों को सही जवाब क्या है।
3: तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, इटली के जैनिक सिनर ने ये खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने फाइनल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 4 पॉइंट से हराकर दूसरी बार विम्बलडन खिताब अपने नाम किया था। तो मरियम चलो, अब किसने सही जवाब दिया है जरा बता दूं उनके नाम।
2: तो हमें सही जवाब देने वाले दोस्तों के नाम है मोहम्मद सईद अब्बासी, जीशान वारसी, गजानन गेले, रतनदीप आर्या, शारून नूर अंसारी, अनिल विनोचा, मुकेश कश्यप, फागुराम यादव, लाल मोहम्मद अंसारी, उमेश कुमार गौर, सदाशिव धोरात, रवि कुमार राहुल, ताज अंसारी, सुभाष, अशोक सिंह, नवी हसन अब्बासी, निसार सलमानी।
3: और नाम शामिल करने से पहले क्यों ना एक नॉन फिल्मी चार्टबस्टर ब्रेक हो जाए मरियम?
2: बिल्कुल श्रेया।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: तो दोस्तों चलिए अब शामिल कर लेते हैं हमारे कार्यक्रम में हमारे बाकी लिसनर्स के नाम जिन्होंने सही जवाब दिया है। जवाब देने वालों के नाम हैं विष्णु टेलर, जॉन डी कैस्ट्रो, राष्ट्रपाल गजपे, नानक खन्ना, सुदर्शन शाह, दोमेंद्र दोमू, राहुल पाल, दिनेश वर्मा, सुरेश राठौर, मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद रफीक पवार, नजमुल होदा, हीरा मणि वर्मा, सुधीर नूतन, गंगा सिंह रावत, राम कुमार रेवार।
2: और इसी के साथ में मसरूर हसन, समीर खान, रोशन, बाबेश पवार, दीपांश वर्मा, मीरा सिंह, धर्मेंद्र छीपा, सुरेश खुराना, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, दिग्दर्शन गौड़, जाकिर मंसूरी, नदीम बाकी, शकील अहमद इदरीसी, संजय ढींगिया, राजेश वर्मा।
1: तो दोस्तों ये तो थे सही जवाब देने वालों के नाम। अब चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं कार्यक्रम को और भी ऊपर स्तर पर एक प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम के हर सुर ने दिल को छुआ, हर लफ्ज ने एक एहसास जगाया। बारिश की इस रिमझिम ने हमें याद दिलाया और यादों का कारवा सजाया। और इसी के साथ दोस्तों, ले आए हैं हम आपको इस कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें मैसेज के जरिए बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर, और आप हमें खत भी भेज सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही पुराने प्ले कहानियां आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी मरियम जैदी
1: और श्रेया विश्वास को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भाई अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? खैर देखो भैया, हाल चाल तो भैया हमारे किसान भाई के भैया बढ़िया ही होंगे, और भैया हमारे किसान भाई की जो खेती बाड़ी है वो भी ठीक ठाक चल रही होगी, और जो जो हमारे भैया हमारे किसान भाई हैं उन्होंने जो पशु पाल रखे हैं उनका भी भैया हमारे किसान भाई अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, और भैया अपने पशुओं को सही समय पर भैया चारा पानी दे रहे होंगे, और भैया उनका भी जो अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि देखो इस समय यो समय चल रहा है बरसात का, और भैया ऐसे में भैया जरा सी लापरवाही हमारे पशुओं को हानि पहुँचा सकती है। तो इसलिए भैया अपने पशुओं की पशुशाला की हमें साफ़ सफाई करते रहना है, और भैया पशुशाला में कहीं पर भैया हमें जलभराव की स्थिति लगती है तो भैया उसे जलभराव नहीं होने देना, वहाँ से उसकी साफ़ सफाई जरूर करनी है, क्योंकि भैया ऐसा होता है कि जहाँ पर जलभराव होता है तो वहाँ पर ना मच्छर मक्खी और रोगाणु पैदा हो जाते हैं, और वो भैया हमारे पशुओं को हानि पहुँचाते हैं। तो इसलिए भैया हमें अपने पशुशाला की नियमित साफ़ सफाई करनी है, और भैया साथ साथ भैया हमें यह भी ध्यान रखना कि जो हमारे पशु हैं उनकी जो पशुशाला हम उसके साथ साथ भैया जो उनकी चूड़ है जो इसमें गोद खाते हैं हमारे पशु उसकी भी हमें साफ़ सफाई करनी है। और देखो भैया इसके साथ साथ हमें खेती बाड़ी के भी काम करते रहना, क्योंकि भैया खेती बाड़ी के काम जब हम करते हैं ना भैया बरसात में ऐसा होता है कि कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप सी निकल जाती है, कभी बादल छा जाते हैं, तो भैया उसके लिए हमें समय से अपना काम निपटाना है। और भैया एक बात का हमें ध्यान रखना, भैया बरसात के समय में ज़्यादातर जो हमारे खेतों में पानी भरा रहता है, और भैया हम क्या करते हैं कि ऐसे ही एकदम से पैर डाल दिया पानी में, तो भैया उससे ऐसा होता है कि कभी कभी कोई हानिकारक जीव हमारे जो खेत हैं उस पानी में हो सकता है, तो भैया वो हमें हानि पहुंचा सकता है, तो भैया उससे बच कर रहना है, उसके लिए भैया हमारे किसान भाई को जूते जरूर पहनने हैं। तो भैया इन बातों का हमारे किसान भाई को ध्यान रखना है। और देखो भैया हमारे किसान भाई को जो हमारे किसान भाई हैं इस टाइम धान की रोपाई कर ली होगी, और भैया अब तो हमारे किसान भैया जो धान की रोपाई जिनने कर ली वो उनकी फसल की अच्छे से देखभाल करनी है, और भैया जिनकी रोपाई पहले हो गई है जिनकी जो जो मुंजी है धान की फसल है वो भैया 1 महीने की हो गई है, तो भैया उन्हें देखभाल करने की ज़रूरत है जा, क्योंकि देखो भैया धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जल प्रबंधन, निराई गुड़ाई, रोग कीट नियंत्रण और संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना जरूरी है भैया, जिससे हमारे खेतों में ये धान का उत्पादन अच्छा हो और भैया लाभ मिले। और भैया देखो जब किसानों भाई को लाभ मिलेगा तो भैया हमारे किसान भाई भैया मनोरंजन की बात भी करेंगे, क्योंकि जब लाभ मिलता है तो हमारे किसान भाई मनोरंजन भी करते हैं, और भैया अच्छी अच्छी जानकारी भी हमारे किसान भाई को मिलती है, तो भैया हमारे किसान भाई जब अच्छी जानकारी मिलेंगी तो हमारे किसान भाई खेती भी अच्छी तरह से करेंगे, और भैया किसान से जुड़ी हुई भैया बहुत सारी बात भी हम तुमसे करेंगे। पर भैया देखो यो समय चल रहा है बरसात का, और भैया बरसात के समय में संक्रमण भैया बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि देखो भैया जगह जगह पर जलभराव की स्थिति होती है, उसमें भैया मच्छर हो मक्खी हो ये सब पैदा होते हैं, और भैया संक्रमण को ये बढ़ावा देते हैं, क्योंकि भैया संक्रमण चाहे कैसा भी हो भैया वो जैसे हमारे पालतू पशु हों उनकी विशेष देखभाल हमें करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे भैया जैसे हमारे पालतू पशु गाय है बकरी है भेड़ है, तो भैया इस समय भैया संक्रमण फैल जाता है और ये हमारी जो बकरी है बीमार हो जाती है, तो भैया बकरियों में ऐसी कोई बीमारी ना हो ऐसा कोई संक्रमण ना हो तो भैया उसके लिए हमें विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो भैया आज एक इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है बकरी में पीपिया रोग कारण लक्षण और निवारण, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार राठी जो कि कार्यरत हैं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ में। तो भैया सुनते हैं उनसे की गई हो बातचीत। किसान भाइयों बरसात का समय चल रहा है और बरसात के समय में सभी जगह जलभराव होता है, और जलभराव होने से मनुष्य और सभी जीवों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, और अगर हम बात करें पशुओं की तो हमारी पशुशाला में गंदगी और जलभराव होने से उसमें मच्छर मक्खी और रोगाणु पैदा हो जाते हैं जिससे पालतू पशुओं में संक्रमण फैल जाता है। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं, और जानकारी का विषय है बकरी में पीपीआर रोग कारण लक्षण और निवारण, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार राठी जो कि कार्यरत हैं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का समय चल रहा है और बरसात में सभी जगह पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है, और जल भराव होने से मच्छर मक्खी और रोगाणु पैदा होते हैं और पालतू पशुओं में संक्रमण इनसे फैल जाता है, और बात करें बकरी की तो

0: स्त्री में भी एक रोग मुख्य रूप से फैलता है जिसे हम पीपिया रोग बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये बकरी में पीपिया रोग क्या है?
1: ये पीपीआर रोग जो है बकरियों में एक वायरल जनित बीमारी है, एक वायरस के कारण होती है। बरसात के मौसम होने के कारण, चूंकि मौसम में नमी रहती है, तो वायरस को फैलने का अच्छा मौका मिलता है। इस वजह से पीपीआर रोग बकरियों में बरसात के मौसम में अधिक फैलता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बरसात के मौसम में संक्रमण फैल जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, ये पीपीआर रोग है किस कारण होता है?
1: पीपीआर जो रोग है ये होता तो वायरस के कारण ही है, क्योंकि इन्वायरमेंट में वायरस रहता है। तो वायरस यदि एक बकरी में आ गया, या हमारे पास हर्ड है तो बकरी बाहर चरने भी जाती है, या वो किसी बीमार बकरी के संपर्क में आ गई तो वायरस उससे दूसरी बकरी में आ जाता है। मुख्य रूप से जो नाक से स्राव होता है या जो बकरी छींकती है उसके ड्रॉपलेट्स के कारण जो दूसरी बकरी है वो हवा के माध्यम से दूसरी बकरी में पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो वायरस है एक बकरी से दूसरी बकरी में फैल जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें मौसम की, तो पीपीआर रोग का प्रकोप किस मौसम में अधिक देखने को मिलता है?
1: वैसे तो ये पूरे वर्ष कभी भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बरसात का मौसम, अत्यधिक ठंड का मौसम, जिस वक्त बकरी की खुद की जो क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, जब डाउन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये अधिक फैलता है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये संक्रमण बहुत अधिक तेजी से फैलता है और सर्दियों के मौसम में तेजी से फैलता है। डॉक्टर साहब, पीपीआर रोग के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या होते हैं?
1: शुरुआती लक्षण सबसे पहले इसमें तेज बुखार और डायरिया। तेज बुखार 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बकरी में बुखार हो जाता है, और उसी के साथ साथ उसको डायरिया होता है, और जो डायरिया यानी कि दस्त लगते हैं उसमें बदबू होती है। यदि डायरिया के साथ बुखार भी है तो ये शुरुआती लक्षण तभी सचेत हो जाएं और अपनी उस बकरी को जो बुखार के साथ साथ दस्त भी कर रही है उसे बाकी बकरी से अलग कर दें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो डायरिया है या तेज बुखार जैसे लक्षण में दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे धीरे धीरे रोग बढ़ता है, तो रोग बढ़ने पर बकरी में कौन कौन से गंभीर लक्षण में दिखाई देते हैं?
1: मुख्यतः ये वायरस जो है ये बकरी में दो जो सिस्टम है बॉडी के उस पर अफेक्ट करता है, एक तो पाचन तंत्र और दूसरा श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़े पे।
0: जी
1: तो जो पहला लक्षण आएगा वो मुंह से आएगा, तो नाक से और मुंह से स्राव आएगा, गंदा गाढ़ा मवाद जैसा। तेज बुखार है, दस्त है, नाक से स्राव आ रहा है, लार टपकती है। फिर उसके बाद में मुंह के अंदर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं, उनसे बकरी को दर्द होता है और वो खा पी नहीं पाती है। उसमें छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक गोल गोल, जैसे कि आप देखा होगा पुराना जो मधुमक्खी का छत्ता, जो छोटा छोटा छत्ता होता है, उस तरह का सा मुंह पे निचले होठों पर महसूस होता है। दूर से ही देखने पर पता चल जाता है कि इसको मुंह पर घाव हुए हैं, मसूड़ों पर अंदर सारे में अल्सर और घाव हो जाते हैं मुंह पर, और जो दस्त है वो धीरे धीरे, जो शुरू में दस्त में बदबू नहीं होती है उनमें बदबू होने लगती है। श्वसन तंत्र पर इसका अफेक्ट होने के कारण, प्रभाव होने के कारण खांसी, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और अंततः निमोनिया हो जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, जिस बकरी के श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बकरी बीमार होती है, बुखार होता है, तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि सामान्य बुखार है, तो डॉक्टर साहब, सामान्य बुखार और पीपीआर में क्या अंतर है?
1: बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। मुख्य अंतर यही है कि बदबूदार यदि डायरिया है, उसको दस्त लगे हैं और मुंह में कोई छाला महसूस हो रहा है और तेज बुखार है, तो ये 80 से 90% पीपीआर का लक्षण है। क्योंकि जो सामान्य बुखार होता है उसमें मुंह पे छाले नहीं आते हैं। मुंह में छाले आते तो एफएमडी में आते हैं, लेकिन एफएमडी में खुरपका मुंहपका रोग में बुखार के साथ साथ छाले तो आते हैं, लेकिन उसमें डायरिया यानी कि दुर्गंध युक्त दस्त नहीं लगते हैं। तो दोनों में बिल्कुल साफ अंतर है। उसमें खुरों में भी छाले आएंगे एफएमडी में, या सामान्य बुखार में कोई छाला नहीं आएगा, लेकिन पीपीआर में सिर्फ मुंह में छाले आएंगे और साथ साथ बुखार है और डायरिया है, तीन लक्षण एक साथ मिलकर इसको पीपीआर के लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पीपीआर के जो लक्षण है वो तेज बुखार और डायरिया, इस तरह की जो संक्रमण वो देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, क्या पीपीआर का प्रभावी इलाज संभव है या नहीं है, या केवल कुछ सावधानी अपनी हमें बरतनी पड़ती है?
1: एक बार रोग हो जाने के बाद, चूंकि ये वायरस जनित रोग है इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सहायक देखभाल है। सहायक देखभाल जरूर करानी चाहिए, नहीं तो मृत्यु दर अधिक है इसमें, 80 से 90% तक मृत्यु दर है। सहायक देखभाल में एक तो चूंकि इसमें दस्त लगते हैं, तो दस्त लगने के कारण उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनती है बकरी में, तो उसको 5% डेक्सट्रोज चढ़वानी चाहिए, और साथ साथ चूंकि छाले हो गए हैं उसमें दूसरा संक्रमण जो बैक्टीरियल संक्रमण है वो हो जाता है। बैक्टीरियल संक्रमण को हटाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिलानी चाहिए, ये दो चीज हो गई। तीसरा, चूंकि बुखार इसमें बना रहता है तो बुखार को कम करने के लिए मेलोक्सिकैम नामक दवा आती है, उसका इंजेक्शन भी लग जाता है, उसकी गोली भी चाहिए, वो गोली देनी चाहिए। और जो स्वस्थ पशु हैं, जो स्वस्थ हमारी बकरियां हैं, उनसे बिल्कुल अलग कर दें, नहीं तो पूरे जो हमारा हर्ड है, पूरा एक हमारा झुंड है, उसमें सब में बीमारी फैल जाती है। तो मुख्यतः तीन बातें मैंने बताई इसमें, एक तो उसको डेक्सट्रोज 5% एंटीबायोटिक्स और साथ में बुखार कम करने की दवाई मेलोक्सिकैम, ये तीन दवाई चलती हैं 5 से 6 दिन में। तो उसके जो लक्षण हैं जो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और बकरी का जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है और वो ठीक होने की आशा की जा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो हम कुछ सावधानियां बरत कर अपनी बकरी को इन रोगों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारी बीमार बकरी है जो पीपीआर से पीड़ित है, तो क्या विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है?
1: विशेष देखभाल उसकी एक जो पास में पशु चिकित्सालय है वहां पर दिखाएं और उसको बुखार की दवाई दें। उसके जो घाव हैं, घाव को बोरोग्लिसरीन एक सॉल्यूशन आता है, या ना भी मिले तो ग्लिसरीन में आप घर पर ही किसान ग्लिसरीन लेके जो लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा सा बोरिक एसिड मिला लें और बोरिक एसिड मिला के उसको मिक्सर को जो घाव हमारे मुंह में छाले पड़े हैं या मुंह के ऊपर है उन छालों पर आप लगाएंगे तो इससे जो है उसके छालों में बहुत आराम मिलता है, दर्द में आराम मिलता है। और बकरी को ऐसा चारा दें जो बहुत मुलायम हो जिससे उसके मुंह में दर्द ना हो। लिक्विड दे सकते हैं, उसको दाना वगैरह तरल करके दे सकते हैं जिससे कि उसके चबाने की आवश्यकता ना पड़े और इससे उस बकरी में ताकत बनती है जिससे कि वो बकरी खाने लगती है और उसको राहत महसूस होती है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको
0: जी।
1: जब इसके उपचार की और आपने रोकथाम की बात की, उसके लिए हमें इनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीन पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध होती है।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी वैक्सीन का जिक्र किया, तो पीपीआर रोग के बचाव के लिए टीकाकरण कब और कितनी बार हमें कराना चाहिए?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वैक्सीनेशन इनका जो हमारा 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, पहला वैक्सीन 1 ml सबका डोज उसको लगवा लेनी चाहिए, समय समय पर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध होती है। अगर उस वक्त उपलब्ध भी नहीं है तो आप अपना नाम और पता संबंधित जो आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहां पर लिखवा दें, जैसे ही वैक्सीन आ जाए तो वो आपके पशु को वैक्सीन कर दे। 3 से 4 महीने की एज पर जो बकरी का बच्चा है उसको लगवा दें और उसके बाद जो दूसरी डोज है वो प्रतिवर्ष नोट कर लें और प्रतिवर्ष उसको जो है दोबारा रीवैक्सीनेट कराते रहें तो आपकी बकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसको ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम अपनी बकरी का वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसे बीमारी नहीं होगी, तो डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि पीपीआर का टीका लगवाने के बाद भी बकरी में पीपीआर रोग हो सकता है?
1: बहुत कम कभी ऐसा होता है कि यदि जो वैक्सीन है वो सुरक्षित नहीं रखी गई है, क्योंकि जो हमारी ये वैक्सीन है ये लाइव एटेन्यूएटेड फ्रीज डाइड वैक्सीन है, तो इससे बहुत कम ऐसा होता है कि उसके अंदर ना बने। लेकिन अगर आप उसकी बूस्टर डोज प्रतिवर्ष लगवा रहे हैं तो उसमें दोबारा होने की बहुत कम उम्मीद होती है। यदि उसको हो भी जाए, यदि हर्ड में कोई बीमारी हुई है और हमारी बकरी वैक्सीनेटेड है, तो उसमें इतने कम लक्षण आते हैं कि उसको 1-2 दिन हल्का सा बुखार आके और वो रोग निकल जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि उस बकरी की मृत्यु नहीं होगी और उस बकरी की ऐसी हालत नहीं होगी कि वो आप दुग्ध उत्पादन या आपको कोई गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाए।
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर हम अपने बकरियों का टीकाकरण कराते हैं तो भविष्य में ऐसी कोई बीमारी का सामना हमारी बकरियों को नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक बात और आती है कि यदि हमारे झुंड में किसी एक बकरी को पीपीआर रोग हो जाता है तो जो बाकी बकरी है उन्हें कैसे बचाया जा सकता है?
1: उन बकरियों को बिल्कुल उनसे अलग कर दें, सिर्फ सेपरेशन ही इसका इलाज है कि जो बकरी हमारी जो प्रभावित है उस बकरी को उन बकरियों से बिल्कुल अलग कर दें। उसका जो खाने का है या जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं उनको जो है आप बाहर चराने के लिए ले जा रहे हैं बिल्कुल झुंड में ना ले जाएं, उसको बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि उस बकरी के छींक से खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो वायरस फैलेगा और वो दूसरी बकरियों को भी प्रभावित करेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो हमारी बकरी है जो जो पीपीआर रोग से पीड़ित है उसे हमें झुंड में नहीं रखना, उसे अलग रखना है। डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो पीपीआर रोग है इससे हमारी किसान भाई को क्या क्या आर्थिक नुकसान हो सकता है?
1: कि यदि झुंड में एक बार ये बीमारी फैल जाती है तो इसका मृत्यु दर जो है 80 से 90% तक है। अब एक आम गरीब किसान जो अपनी बकरियों के सहारे जी रहा है, यदि उसकी 70 से 80% बकरियां जो है मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो उसको बहुत गंभीर आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए टीकाकरण ही इसका एकमात्र उपाय है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि वो अपने संबंधित पशु चिकित्सालय से वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगती है, इसका कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपने पशुओं का, जो हमारे किसान भाई हैं जो बकरी पालन करते हैं ना, पीपीआर का टीका जरूर लगवाना है। डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पीपीआर रोग है क्या ये मनुष्य में फैल सकता है?
1: नहीं, पीपीआर रोग जो है मनुष्य में नहीं फैलता है। इसका जो नाम है पेस्टिडेस पेटेटिस रुमनाइटिस है। ये सिर्फ रिमनेंट्स जो होते हैं उनमें फैलता है, जो बकरी में भेड़ में।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मनुष्य में नहीं फैलता, ये केवल जो छोटी बकरियां हैं उनमें फैलता है। डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो बकरी पालक किसान भाई हैं, अगर वो नई बकरियां खरीदते हैं तो बकरियां खरीदने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानी जब वो खरीदते हैं तो उन्हें रखनी चाहिए?
1: बकरी खरीदने के लिए जब वो जाते हैं, एक तो उनकी नस्ल का ध्यान रखें कि उनके यहाँ कौन सी नस्ल जो है उनके यहाँ अच्छी नस्ल की बिक्री हो रही है, वो किस पर्पज के लिए उसको रख रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वक्त कई योजनाएं जो हैं बकरी पालक किसानों के लिए चल रही हैं, जिन पे सब्सिडी भी है। अगर आप 100 बकरियां की एक यूनिट लेते हैं तो उसमें 50% की जो है सब्सिडी दी जा रही है। 10 लाख रुपए का उसमें लोन होता है और 5 लाख रुपए सरकार उसमें सब्सिडी के रूप में हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे बकरी पालक हैं, उनको दे रही है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो सरकार द्वारा योजना है, जो चाहे वो पीपीआर नियंत्रण को लेके हो या बकरी पालन को लेके हो, हमारे किसान भाई उसे जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे भविष्य में इस रोग से बचने के लिए जो बकरी पालक है, तो बचाव के लिए कौन कौन से नियमित उपाय अपनाएं जिससे हमारे उन्हें ये रोग का सामना ना करना पड़े?
1: एक तो जब भी वो अपने झुंड में या अपने बकरियों जो हमारे पास पहले से हैं, हम कोई नई बकरी ला रहे हैं, उसको तुरंत ही अपने झुंड में शामिल ना करें। पहले उसे 5 से 6 दिन क्वारंटाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको अलग किसी बाड़े में उनसे दूर रखें, जिससे कि हमें 5 से 6 दिन में अगर उसको पहले से कोई बीमारी है तो उन किसान भाइयों को, उन हमारे बकरी पालकों को ये पता चल जाएगा कि ये बीमारी किस बकरी में है, जिससे कि वो बीमारी हमारे पूरे हर्ड में ना फैल सके। पहला तो यही उपाय है। दूसरा, कोई भी किसान या जैसे बाहर से कोई घूमने आता है उसे तुरंत अंदर अपने हर्ड में ना जाने दें, उनको बाहर रखें या उनके जूते उतरवा दें या बाहर चूने की एक लेयर डाल के रखें, जिससे कि उनके जूतों पे चूना अच्छे से लिपट जाए और अगर कोई वायरस बाहर से है तो वो अंदर ना जा सके। दूसरा ये है। तीसरा, जो अंदर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, नीचे गीला ना होने दें, जो नीचे झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से साफ रखें, और जहां पर हमारी बकरियां बनती हैं वहां पर प्रॉपर जो है वेंटिलेशन हो, वहां पे हवा का जो है आवागमन अच्छी तरह से हो, जिससे कि बकरियां अच्छे से सांस ले सके, बकरियों में कोई सफोकेशन ना हो, क्योंकि बकरी बीमारी तभी पकड़ती है या कोई भी पशु बीमारी तभी पकड़ता है जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब चलते चलते और क्या विशेष जानकारी हमारे बकरी पालकों को पीपीआर रोग से बचाव के संबंध में देना चाहेंगे आप?
1: मैं अंत में यही सबको बताना चाहूंगा कि प्रथम अपने जो बकरी हैं उनका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन से पूर्व 15 दिन पहले जब आपको वैक्सीनेशन कराना है उन्हें पेट के कीड़ों की दवाई दें। पेट के कीड़ों की दवाई देने से उनकी जो है वैक्सीन का जो प्रभाव है बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, अपनी बकरियों का रोज नियमित ध्यान रखें कि कोई बकरी बीमार तो नहीं है, किसी बकरी को दस्त तो नहीं लगे हैं, या किसी बकरी का खाना पीना जो कम हो गया है, शुरुआती दौर में बकरी बिल्कुल खाना कम करती है, तो उन बकरियों को, ऐसी बकरियों के लिए एक बाड़ा अलग जरूर रखें। जो बकरी बीमार दिखाई दे रही है उसे बिल्कुल अलग रखें, तो इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी बकरी में ये लक्षण आ सकता है, या कोई बकरी के नाक से स्राव आ रहा है या मुंह से राल टपक रही है तो उसे भी बिल्कुल अलग कर दें, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि ये बकरी बीमारी में आ सकती है, भले ही उसे कोई और कारण रहा हो, लेकिन किसान कम से कम ये तो जान ही सकता है उन 5-6 दिनों में कि हमारी ये बकरी बीमारी में नहीं आई है पीपीआर।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो हमारे किसान भाई हैं इस जानकारी को सुनेंगे और लाभ भी उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुनी जानकारी, जानकारी का विषय था बकरी में पीपीआर रोग, लक्षण, कारण और निवारण, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विपिन कुमार राठी। देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी बकरी के पीपीआर रोग के संबंध में दी, और बताया कि भैया वो कैसे वो कुछ सावधानी बरत को अपनी बकरियों में इस समय भैया संक्रमण से बचा सकते हैं और भैया लाभ कमा सकते हैं। और देखो जब बात लाभ की आती है तो भैया लाभ हम भी कमाएं, और भैया सुन लें जल्दी से कुछ जरूरी संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001424।

0: 42।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
2: देखो भैया, संदेश तो हमारे किसान भाई ने सुन लिया, और भैया अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भैया बात करते हैं कुछ खेती किसानी की। देखो भैया, हमारे किसान भाई भैया खेती करते हैं और भैया लाभ भी कमाते हैं, और भैया उतना लाभ नहीं कमा पाते जितना कमाना चाहिए था, क्योंकि भैया हमारे किसान भाई भैया लागत ज़्यादा लगा देते हैं। तो भैया लागत कम हो वो, उसके लिए भैया हमारे किसान भाई जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि भैया जैविक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें भैया रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसके स्थान पर भैया गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, बर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक और जैविक कीट नियंत्रक के उपाय अपनाए जाते हैं। इसका भैया मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और भैया सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना। और भैया आज के समय भैया जैविक खेती का महत्व की बात करो तो भैया आज रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की जो गुणवत्ता है भैया उसमें कमी आ गई है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है भैया, मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में भैया जैविक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। इस समय मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, भूमि की जल धारण क्षमता बेहतर होती है और भैया प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण इससे होता है। और भैया ये जो जैविक खेती है हमारे किसान भाई से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि भैया हमारे किसान भाई को अपने खेतों में गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का उपयोग करना है। और भैया जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम हो गया भैया, एजोटोबैक्टर हो गया और भैया फास्फेट घुलनशील जीवाणुओं का प्रयोग भी हमें खेती में इसमें करना है। और भैया इसके साथ साथ हमारे किसान भाई को फसल चक्र भी अपनाना है, क्योंकि जब हमारे किसान भाई अलग अलग फसलों को बदल कर बोते हैं तो भैया उसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और भैया साथ में जैविक कीट नियंत्रण भी हमारे किसान भाइयों को करना है, जिससे भैया हमारे किसान भाई जो भैया नीम आधारित उत्पाद हैं भैया, जैसे और भैया ट्राइकोडर्मा हो और भैया अन्य जैविक उपाय से भैया कीट और रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे भैया उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और भैया लाभ भी हमारी जो किसान भाई को जरूर मिलेगा, क्योंकि भैया एक तो इसमें भैया मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार होता है। अगर हमारे किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो भैया मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार होता है, उत्पादन सुरक्षित होता है, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण हमें जो उत्पाद वो मिलता है। और भैया सबसे बढ़िया जो बात है इसमें जो प्रदूषण है वो उसमें भी कमी होती है, और भैया साथ साथ जो जल के स्रोत हों उसकी गुणवत्ता भी सुरक्षित रहती है। और भैया एक बात और है, जो हमारे लाभदायक कीट हों और भैया जो सूक्ष्म जीव हों उनका भी संरक्षित हो जाते हैं, और भैया जैविक जो उत्पाद हों उनका जो बाजारों में मूल्य है वो भी अच्छा मिलता है। तो और भैया इस जो किसानों की खेती है भैया वो दीर्घ काल तक भैया लंबे समय तक बनी रहती है, और भूमि जो हमारी बंजर होने से बच जाती है। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि जो जैविक खेती है वो भविष्य की टिकाऊ कृषि प्रणाली है, इससे भैया उत्पादन तो बढ़ता ही है और भैया साथ साथ हमारी मिट्टी हो, पर्यावरण हो और मानव स्वास्थ्य हो उसको सुरक्षा मिलती है। अगर हमारे किसान भाई भैया वैज्ञानिक सलाह के अनुसार भैया जैविक खेती अपनामो और भैया सरकार द्वारा जो कृषि संस्थानों का सहयोग लेमो, तो जैविक उत्पादन से भैया वृद्धि के साथ साथ किसान भाइयों की आय भी बढ़ेगी। और भैया जब हमारे किसान भाई की आय बढ़ेगी तो भैया उन्हें लाभ भी मिलेगा। देखो भैया लाभ जब मिलेगा तो हमारे किसान भाई भैया खुशी खुशी रहेंगे, और भैया जब खुशी हमें भी होगी तो भैया हम भी एक खुशी और कर लेंगे। भैया एक छोटा सा विराम हम भी ले लेंगे और भैया सुन लेंगे कुछ जरूरी संदेश।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

देखो भैया, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया, और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और भैया बात करते हैं खेती किसानी की। देखो भैया, हमारे जो किसान भाई खेती करते हैं और भैया उत्पादन भी अच्छा प्राप्त करते हैं। अगर भैया किसान भाई उत्पादन अगर प्रभावित होता तो भैया उसका कारण होता भैया हमारे जो जो किसान भाई हैं उन भैया फसल को सही से सिंचाई ना होना, भैया खाद ना मिल पाना। तो भैया उससे क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो प्रभावित हो जाती है, क्योंकि भैया फसल के लिए समय समय पर खाद पानी देना जरूरी है। इसके लिए भैया जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर भैया हमारे किसान भाई के पास फसल के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है तो भैया वो सरकार की योजनाओं से जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं और भैया लाभ कमा सकते हैं। देखो भैया, सरकार की सिंचाई को लेकर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है भैया पीएम कुसुम। भैया ये प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना है। इसका भैया प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान भारत सरकार की भैया एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य भैया किसानों को सिंचाई और बिजली पर निर्भरता कम करना है और भैया साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना है। भैया योजना का जो संचालन है भैया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा किया जाता है। और भैया इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भैया किसानों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराना, डीजल और बिजली की लागत को कम करना, और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, और भैया साथ साथ किसान की आय में वृद्धि करना, और भैया पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करना। भैया इस योजना से जुड़कर हमारे किसान भाई भैया बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। एक तो भैया जो सिंचाई के लिए दिन में भैया हमें जो बिजली मिलती है भैया जो सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है, एक तो उसकी लागत कम होती है और भैया हमारे हमें परेशान नहीं होना पड़ता। हमारे जो पंप है भैया सूरज की रोशनी है जो सौर ऊर्जा है उससे चल जाता है, और भैया साथ साथ डीजल का जो खर्चा है वो भी कम समाप्त हो जाता है, और भैया बिजली कटौती जो होती है ना उससे भी हमें निजात मिलती है। तो भैया सौर पंपों का भैया रख रखाव जो हम मानते हैं भैया वो हमारे जो वैसे ट्यूबवेल है उससे कम होता है। तो भैया हमारे किसान भाई इस योजना से भैया जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। भैया अगर इस योजना की पात्रता की बात करो तो भैया इसमें आबे तक जो हो वो भारत का किसान होना चाहिए, उसके पास भैया कृषि भूमि होनी चाहिए, और भैया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो अन्य शर्तें हैं उसका पालन भी करना उसे आवश्यक है, क्योंकि भैया पात्रता और अनुदान राज्य के अनुसार अलग अलग हैं। इसमें भैया आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करूँ तो सबसे पहले भैया किसान भाई के पास उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, भूमि के दस्तावेज, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो और भैया मोबाइल होना आवश्यक है। इसके लिए भैया हमारे किसान भाई राष्ट्रीय पीएम कुसुम जो पोर्टल है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या भैया जो राज्य की नोडल एजेंसी है उसके माध्यम पर भी आवेदन कर सकते हैं, और भैया सभी जानकारी को भैया जांच कर आवेदन भर कर भैया वो सबमिट कर सकते हैं। और भैया आवेदन जमा होने के बाद भैया आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी, आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे भैया भविष्य के लिए वो सुरक्षित रख लें। और भैया फिर संबंधित विभाग द्वारा जो दस्तावेज हैं उनके भैया सत्यापन किया जाता है, और आवेदन स्वीकृत होने पर जो विक्रेता है या हमारे डीलर हैं भैया उनके द्वारा जो है सोलर पंप हमारे जो खेत में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे भैया किसान भाइयों को लाभ मिलता है। और भैया जब लाभ मिलता है तो हमारे किसान भाइयों का मन प्रसन्न होता है, और जब भैया मन प्रसन्न होता है तो हमारे किसान भाइयों का मन करता है गीत संगीत का। तो भैया ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे किसान भाई ने भेदभाव बेटी से करके, अभी हमारे किसान भाई ने भीम सिंह की आवाज़ में यो प्यारी सी रागनी सुनी। और देखो भैया हमारे किसान भाई का मनोरंजन भी हो गया होगा और भैया जो थकान है वो भी मिट गई होगी। और देखो भैया अब जा समय आ गया मौसम की चिट्ठी का, क्योंकि भैया ये मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ से। और भैया चिट्ठी के अनुसार भैया अब जा कहीं कहीं भैया गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने का अनुमान है। तो भैया जो हमारे किसान भाई हैं भैया मौसम को देख कर अपने कृषि कार्य करते रहे हम। और देखो भैया अगर बात करो घड़ी की, तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आप सब बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते अपने किसान भाई को पता जरूर बता दे मैं, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारा पिन कोड है 2467633। तो किसान भाइयों इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्री का रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भाई अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 10 बजे सुनिएगा

प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आज संध्या 6:50 पर, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद, आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का तीसरा भाग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे राशिद बदर साबरी और साथियों की आवाज में चंद कव्वालियां।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनोहर चमोली मनु का लिखा पूर्व प्रसारित नाटक मुक्ति, जिसके निर्देशक होंगे विनय ध्यानी। आज रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संध्या। कल रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल में हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का समय रहेगा कल रात्रि 9:30। धरती गाती है इस कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे योगेंद्र पाल की गाई कुछ रागनियां। कल प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता, जिसमें हमारा कल का विषय रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। कल दिन में 12:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण का राग भीम पलासी पर विचित्र वीणा वादन। तबले पर आपके साथ संगत करेंगे साबिर हुसैन खान। कृषि जगत कार्यक्रम में कल संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे स्वच्छ जल मिशन और पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कल संध्या 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा हुनरबाज श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली मेहमान पंकज लोचन गोस्वामी से शोभित शर्मा की बातचीत।

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल संध्या 5 बजे जानकारी का विषय रहेगा वृद्धजनों के कल्याण हेतु योजनाओं के अंतर्गत सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE इनिशिएटिव और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कल दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, घर से रोजगार या व्यवसाय, इन विषयों पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे स्तनपान का महत्व विषय पर डॉक्टर जयवंती देवी से नीतू अग्रवाल की बातचीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:50 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा।

0: जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ रेनू बहनी।
1: भैया कहा जाता है कि जल ही जीवन है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बहुत से जने ये बात का समझत नहीं है और अथाह पानी जोन है बहावा करत है।
0: लेकिन

0: बहनी, हम पंचन का चाही कि हम पानी के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करी, और यही बदे आपन जो सरकार है वो योजना चलाए रही है प्रति बूंद अधिक फसल।
1: बिल्कुल भैया, काहे कि यहाँ पानी जो है चाहे मानव हो और चाहे खेती पाती हो, दोनों के लिए वतने जरूरी है। यही बदे जोन है हम पंचे पानी की एक एक बूंद का यहाँ इस्तेमाल करी और योजना के भरपूर लाभ उठाई।
0: बिल्कुल ठीक कहती हो बहनी, मूल यकरे साथे साथे अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं हम पंचन का वहु केर जानकारी हो चाहिए।
1: तो भैया काहे न सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: CISH लालिमा अमरूद की एक उन्नत एवं अत्यंत संभावनाशील किस्म है, जिसे ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा एप्पल अमरूद के रूप में चयनित किया गया है। इस किस्म के फल गोल मध्यम आकार के तथा आकर्षक गहरे लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका 1.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा होता है, जिससे फल परिवहन एवं भंडारण के दौरान अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसका गूदा सख्त होता है तथा मिठास और हल्की अम्लता का उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है, जिससे इसका स्वाद बेहद आकर्षक बन जाता है। इस किस्म में विटामिन सी 150 से 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है, जो इसे पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण ये किस्म ताजे फल के रूप में उपयोग के साथ साथ जूस, जेली, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। इस किस्म का विकास डॉक्टर शैलेंद्र राजन एवं डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया है, जबकि डॉक्टर अंशुमान सिंह इसके अनुरक्षक वैज्ञानिक हैं। इसका विकास वर्ष 2015 में किया गया तथा वर्ष 2024 में इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया देखो, अगर कोनो काम समय पर होत है ना, तो हमका मुनाफा जोन है ज्यादा होत है, लेकिन उके खातिर हमका उस समय की जानकारी होनी चाहिए कि उस समय पर कौन काम हमका ज्यादा फायदा दे। तो आज की बात में यहाँ हम ऐसे एक भेंटवार्ता लेके आए हैं, आम के बागों में सामायिक कृषि कार्य,
7: और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल सरोज भैया, और इनसे बतकही किहीन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आम की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं, वहां इस समय सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर पीएल सरोज साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम में फलत टूट चुकी है, ऐसे में आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन।
9: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आम फलों का राजा है, जो अपने स्वाद, मिठास, पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत में आज लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम की खेती हो रही है, जिससे करीब 2.5 से 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है।
8: यानी 2.5 से लेकर 3 करोड़ टन।
9: जी, आम न केवल राज्य कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, अपितु लाखों बागवान भाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों, निर्यातकों आदि की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बाग पारंपरिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं, जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष की हो चुकी है। पौधों की ऊंचाई काफी बढ़ गई है, डालियां आपस में मिल गई हैं, सघनता के कारण प्रकाश एवं आयु का उचित संचरण

0: नहीं हो रहा है।
1: अगस्त का महीना चल रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रमुख कार्य करें बागवान भाई बहन?
0: सामान्यतः अब इस समय सभी किसान भाई फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगस्त के महीने में बागों का जो प्रमुख कार्य होता है वह खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग का होता है।
1: जी,
0: यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि बाग में पानी भरा हुआ है तो खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। पहले बाग से पानी निकालकर जब खेत जुताई के उपयुक्त हो जाए तो अच्छी तरह से जुताई करके खेत को पहले खरपतवार रहित कर लें। पूर्ण विकसित बाग के लिए सामान्य तौर पर 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नत्रजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है
1: प्रति पेड़।
0: अब अगस्त के महीने में जब हमको खाद देना है तो यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को देना है।
1: अच्छा, तत्व के रूप में,
0: या इसे यूं समझें, अगर हमको लगभग 500 ग्राम नत्रजन देना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम अगर हमको पोटास देना है तो उसके लिए 800 ग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटास, और फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग 500 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम DAP को हम दे सकते हैं। डेढ़ से करीब 2 मीटर की दूरी पर करीब 1 फीट चौड़ी नाली बनाएं जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हो,
1: यानी गोलाई में
0: नाली को बनाना है, और उसी नाली में अच्छी तरह से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में जो देसी खाद है सबको मिला लें,
1: गोबर की सड़ी खाद।
0: फिर नाली को बंद कर दें। यदि नमी की कमी है या वर्षा नहीं होती है ऐसी परिस्थिति में हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच जाए जो स्वस्थ बाग के लिए आवश्यक है एवं वृक्ष की वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं फल गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हुए बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी किसान भाई कुछ बागों में हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि बोए हैं, यदि अगर उसको बुआई किए हैं तो वह पलटाई का समय आ गया है, मतलब उसकी जुताई करके
1: हरी खाद मिलाने का
0: भी ये समय अगस्त का महीना होता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे दाल में नमक की जरूरत है उसी तरह फलदार वृक्षों को मुख्य और गौड़ पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी?
0: जी, जैसे हमारे मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं उसी तरह फलदार वृक्षों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फलत के लिए, उसके टिकाव के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अधिकांश मृदाएँ क्षारीय प्रकृति की हैं, अर्थात उनका pH मान 7.5 से ज़्यादा है एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सामान्यतः कम है। ऐसी परिस्थिति में जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनका परणीय छिड़काव करना चाहिए। अलग अलग इन तत्वों का प्रयोग करने के लिए बागवान भाइयों को काफ़ी कठिनाई होती है, अतः इसके लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्वों का एक मिश्रण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है जिसे हम फसल प्रभात के नाम से जानते हैं। इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होता है,
1: यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है,
0: और इसको देने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर परणीय छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी जब मौसम खुला हो तब इसका छिड़काव करें तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, अगस्त में रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कुछ करना है?
0: अवश्य करना चाहिए। आम के फलों को तोड़ने के बाद पौधों की जो सूखी, रोग ग्रसित एवं सघन शाखाएं हैं उनकी काट छांट करना बहुत आवश्यक होता है। रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए 250 ग्राम लगभग 1 पाव ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके प्रतिवृक्ष यदि देते हैं तो इससे पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारियां लगने की संभावना कम होती है।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ किसान भाइयों को बागवानी से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण देता है और आमतौर पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, इसलिए बागवान भाई संपर्क

0: सकते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा को मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, जो उनको वार्ता करने में आसानी रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 94-83-50-96-53, 9483509653, 94-83-50-96-53। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम के फलदार वृक्षों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सामयिक कृषि कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको नहीं किया तो आप अगले वर्ष अच्छा उत्पादन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय पर खाद दें, समय पर निराई गुड़ाई करें और उसमें जो सूक्ष्म तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो देखे होंगे आप, जैसे वर्षा समाप्त होगी फल वृक्षों से गोंद निकलने लगता है, अतः उसके लिए भी आप अगर कॉपर सल्फेट का घोल बना करके पौधे के मुख्य तने पर लगा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा।
1: डॉक्टर पीएल सरोज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेनु बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो जानकारी के बाद तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवनाई की बात हो जाए।
3: बिल्कुल भैया हो जाए, तो और सुन लीन जाए एक खिमटा सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर में। यहाँ
2: जहमा वो कह रहे हैं सुलहो सिंगार कही के।

0: रेनु बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में कितना मेहनत करी थे, मूल कऊ दाए ऐस हो जाते थे कि हम उतना फायदा ना पाई थे। मूल बहुत से ऐसे पंच हैं जे वह फायदा का बनाए लिए थे और उनके बात करी थे हम पंच आज के किसान में।
1: तो भैया देखो आज ऐसे ने एक किसान अपनी बैठकी में आए हैं और भी बता रहे हैं डेयरी व्यवसाय के बारे में। यहाँ इनके नाम है ओम बाबू वर्मा भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ाव हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरी छठीवी से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई, उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदरबाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए, उसी जगह से हमने फिर आईटीआई अलीगंज से पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना गोपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहां से शुरुआत की।
2: तो गोपालन शुरू कब किया आपने?
3: मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो 2-2.5-3 लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया काफी, 5-6 लीटर के आसपास हो गया।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा, और दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा, उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे वहाँ मट्ठा बहुत अच्छा है। तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी के उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतने समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है।
2: तो फिर एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं?
3: इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय हैं, बाकी छोटे बड़े मिला 55-60 के आसपास जानवर हैं।
2: कौन सी नस्ल है?
3: मेरे पास करीब 4 गिर की हैं, बाकी सब साहीवाल नस्ल के हैं।
2: अच्छा।
3: जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखी, घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ तैयार किए और अपनी बछिया भी काफी तैयार है
2: और उसको भी उत्पादक बना चुके हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले मारे हैं,
2: हाँ,
3: उससे साहीवाल की बछिया बहुत अच्छी है हमारे पास है।
2: तो ये बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक?
3: खान पान तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआर खरीद लेते थे और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही।
2: अच्छा।
3: ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में,
2: जी शांति कुंज में।
3: हाँ शांति कुंज में। तो वहाँ हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसी कि बिल्कुल चमकीली हो गए और उसके बाद गाय मेरी सारी सारी गाभिन हो।
2: यानी पशु आहार खुद बनाते हैं?
3: खुद पशु आहार बनाते, एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशु आहार दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते।
2: तो संतुलन क्या रखते हैं दाना खली और चूनी का?
3: हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो, और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है,
2: हाँ,
3: और उसके बाद चने की चूनी,
2: हाँ,
3: और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं।
2: अच्छा।
3: चोकर है, उसके बाद 1 क्विंटल का मानक बता रहे हैं हम, और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं और 1 किलो हम मीठा सोडा।
2: अच्छा।
3: हाँ, और जो है इसी में 5 किलो खली।
2: 100 किलो में?
3: 100 किलो में। तो ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते हैं कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
2: तो जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं?
3: दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है।
2: हो रहा है?
3: हो रहा है।
2: और आगे जो गाभिन होगी ब्याएंगी?
3: 20 गाय मेरे पास बच्चा देने वाले, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने

0: की है जो तैयार की साहीवाल गिर, उसमें से देंगी
1: तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाएगी,
0: दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर की इसकी तैयारी कर ली है।
1: जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं, सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार?
0: ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3 से 4 किलो के आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेकर मतलब वजन के हिसाब से देते हैं जानवर के, लगभग कितना वजन है 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा ये देते हैं। और जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रही तो उसको हम 2.5 से 3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते।
1: बहुत बढ़िया।
0: और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है। कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे उसको गाड़ दिए, उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 विश्वे के आसपास।
1: अच्छा, उसमें अपना घूमती
0: टहलती रहती है।
1: तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है?
0: करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है, तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है करीब 78 लीटर 80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन गया, तो वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है। और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल देते, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं।
1: अच्छा, दही भी बेचते हैं?
0: दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं। तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15 से 16 हजार 17 हजार के आसपास पर डे की होती है।
1: पर डे
0: की, और जिसमें से हमारे पास करीब 7 हजार 8 हजार 9 हजार रुपए के गायों के प्रति
1: खर्चा है।
0: खर्चा भी है, लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान गाय पाले लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद अपना प्रोडक्शन तय, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे।
1: ओम बाबू वर्मा भैया, किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर मेरा जो है 7080-9999-7080-8999-2878 7080-9999-2878।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
0: हमने कभी सोचा नहीं था, लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गौ पालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है हम, क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते। तो हमारी जिद ने इसमें ले गए, और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, अपने ग्राहकों के पास पहुंचाएंगे।
1: और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध दही और मट्ठा साथ में घी भी बेच रहे हैं, और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में हैं, और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया, अपनी खेती पाती में यहाँ कोनो काम हो, लेकिन मौसम के री जानकारी अगर अच्छी हो ना तो काम बहुत बढ़िया बनत है। तो काहे ना दे दिन जाए अपने पंच भैया बहनिन का यहाँ मौसम के रे हाल।
4: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है।
3: भैया देखो, ये तो हो गए मौसम के हाल, लेकिन अगर कोई पंच भैया बहनी हमका सुझाव भेजा चाहते हैं, कार्यक्रम से संबंधित कोनो बात बतावा चाहते हैं, तो उके खातिर हुई हमार पता नोट कर लें। हमार पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001। और भैया देखो, आजकल है डिजिटल के जमाना, तो बहुत से लोग मेल भेजते हैं जो उनकी ज्यादा सहज होते हैं, तो बता दो अपन मेल आईडी।
4: तो पंच भाई लिखें FARMANDHOME फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
3: और भैया देखो, कार्यक्रम के समय हो चुका है अब समाप्त, तो लीन जाए अपने पंच भैया बहनी से आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए गैस उत्पादों को खरीद और सही मूल्य देने की गारंटी देने की कोशिश की गई है।
1: आज जो स्कीम अप्रूव हुई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें 6 पिलर्स हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस CBD जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया, यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने असम में बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था उसी संकल्प का विस्तार आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की इसी सोच की नई कड़ी घुमंतू विकास बोर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित विमुक्त एवं घुमंतू समाज को न्याय सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है।
2: ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आरागे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है। पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मिश्रा के वकील ने दलील दी कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वे पारिवारिक कार्यक्रमों सहित अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने में असमर्थ हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज 45वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेघावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटों और बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत है और इससे प्रेरणा लेकर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पार्टी के प्रति उमाशंकर सिंह की निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है। इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में तिरंगा संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली अंतर्गत महुली मंडी के पास एक जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटनास्थल का मुआयना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
3: 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी की पत्नी का एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर है वो बचे हुए हैं। उनकी दुखद घटना है। प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में भेज दी जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा शोक जताया है। वहीं बाराबंकी में भी बारिश के कारण दरियाबाद में भी घर की दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। भारी बारिश के कारण इटावा और जौनपुर में आज स्कूल बंद रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में इटावा में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा आज खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही और उसके कारण गंगा नदी उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आज तिगरी गंगा का जलस्तर 200.45 मीटर दर्ज किया गया है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में 133,357 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: हमीरपुर में बीती रात नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं झांसी में आज हुई सड़क दुर्घटना में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनोहर चमोली मनु का लिखा नाटक मुक्ति, जिसके निर्देशक होंगे विनय ध्यानी। और इस नाटक

में प्रतिभागी कलाकार होंगे पवन संगम, सविता सहाय, कुमारी सोनिया वर्मा और अनिल भारती। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, रात्रि 10 बजे सुनिएगा प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल में हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं राशिद बदर साबरी और साथियों के स्वर में चंद कव्वालियां। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का जो आगाज हुआ है वो हुआ है राशिद बदर साबरी और साथियों के स्वर में पहली कव्वाली से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली कव्वाली।
1: जी चाहता है नाते पयंबर लिखा करूं,

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं राशिद बदर और साबरियों के और साथियों के स्वर में कुछ कव्वालियाँ। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश।

बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दीपनाह अस्तु हुसैन सरदादु नदाद दस्तु दर दस्ते यजीद।

0: राशिद बदर साबरी और साथियों के स्वर में अभी आप ये कव्वाली सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी

गिनती शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के

एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवरालू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा।

ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम गीत संध्या सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जी हाँ श्रोताओं, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है और इसमें प्यार के लम्हे

इतने बड़े हैं कि आप जब किसी से प्यार करते हैं तो वो पल बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था क्रांति। गीत लिखा था संतोष आनंद ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है दो बदन। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है रवि ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दो बदन का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1982 में आई हिंदी भाषा की रोमांटिक शानदार फिल्म प्रेम रोग से कुछ गीत। श्रोताओं, फिल्म प्रेम रोग आई थी 1982 में और ये एक प्रसिद्ध क्लासिक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक महान फिल्मकार राज कपूर थे। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये फिल्म विधवा विवाह और समाज में महिलाओं के अधिकारों जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है। इस फिल्म के सारे गीत नरेंद्र शर्मा और संतोष आनंद के लिखे हुए हैं और इन गीतों को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1982 में आई हिंदी भाषा की फिल्म प्रेम रोग से कुछ गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। इसी के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सन 1982 में आई हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म प्रेम रोग के कुछ गीत सुने। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। यह 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों

0: के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउस होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। जी, आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित

0: 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test-fires medium-range Agni 4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है

0: Secretary Chandra Kumar today announced that the BRICS Film Festival will be held alongside the International Film Festival of India in November this year. Mr. Kumar was speaking at the opening ceremony of the two-day BRICS Waves Bazaar in Mumbai. The event, being held under India's BRICS presidency, brings together over 500 delegates from BRICS members and partners from 21 countries with an aim to create stronger pathways for collaboration across sectors. Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the second straight session today. The Sensex gained 374 points to close at 78,955. The Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall along with thunderstorms, gusty winds and lightning over Madhya Pradesh, Rajasthan, Kerala, Mahe, Odisha and coastal and south interior Karnataka tomorrow. Meanwhile, Delhi, Himachal Pradesh and West Madhya Pradesh are also likely to witness heavy rainfall tomorrow. On to sports. In badminton, India's Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj have progressed to the women's singles quarterfinals at the Korea Masters in Assam. Tanvi defeated compatriot Shreyansi Valishetty in the pre-quarterfinals. Ashmita beat home favourite Kim Min-ji, while Rakshita overpowered Japan's Manami Suizu. In the men's doubles pre-quarterfinals, the Indian duo of Prithvi Krishnamurti Roy and Krishna Prasad Garga advanced to the last eight, defeating a South Korean pair. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Govardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to four-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Center rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Keralam. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और देही मईशत को फरोग देने के लिए गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने आसाम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की गरज से गुवाहाटी और तेजपुर के दरमियान चार लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। वजीर आजम ने मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहमी ताउन को उसा देने के अहद का यादा किया है। भारत ने उड़ीसा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाले अग्नि चार बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में इथेनॉल की मिलावट के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तिहान के मामलों पर तलबा का एहतजाज बढ़ गया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आज मरकजी काबीना ने कौमी सर्कुलर हयातियाती तवानाई की स्कीम गोवर्धन को मंजूरी दी। इसके लिए मजमूई तौर पर 23,731 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में नामनिगारों को तफसीलात बताते हुए इतलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ये स्कीम मुल्क के मतरूक जरिए बाकियात मवेशियों

0: गोबर, चीनी मिलों से निकलने वाले नामियाती कचरे, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक फजला और दिगर बायोमास ज़राए को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन, नामियाती खाद तैयार करने, देही आमदनी और कौमी इक्तिसादी सूरत हाल में तब्दीली लाएगी। इस स्कीम का इतलाक 2026-27 से साल 2035-36 तक होगा और ये भारत की मुस्तकबिल की तवानाई की तैयारी के एक अहम सुतून के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस की पैदावार करेगी। इस स्कीम का मकसद अंदरूनी मुल्क कंप्रेस्ड बायोगैस में इजाफा करना, सीबीजी पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना, बड़े पैमाने पर निजी सरमायाकारी को मुतहर्रिक करना और मुल्क भर में एक शानदार सर्कुलर हयातियाती मईशत वजा करना है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आसाम में NH-15 के साथ साथ गुवाहाटी के नजदीक बहारा चरियाली से तेजपुर तक 4 लेन का हाईवे तामीर करने की भी मंजूरी दी। इसकी मजमूई प्रोजेक्ट लंबाई 135.87 किलोमीटर होगी और इस पर 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर BOT टूल मोड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेजपुर बाईपास पर एक हंगामी लैंडिंग की सहूलत की तामीर भी शामिल है, जिसे भारतीय फजाइया के साथ तालमेल से हतमी शक्ल दी जा चुकी है।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है आसाम में एक हाईवे पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यह है बायता चेरियाली यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन स्कीम को मंजूरी देने का काबीना का फैसला माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, देही खुशहाली और खुद कफील मुल्क बनने के भारत के इज्तिमाई ख्वाब को हकीकत का रंग देने की जानिब एक अहम कदम है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि स्कीम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को वसी तौर पर फरोग देगी, जिसका मकसद अंदरूनी मुल्क CBG की पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि NH-15 का 4 लेन वाला गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सफर के वक्त को कम करेगा, सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर अहम बाईपासिस पर होने वाले गाड़ियों की आमदरफ्त को बेहतर करेगा। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा राई के बाइस दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत सरमाही इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन और दिगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 ऐवान में गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किया। ताहम मुसलसल हंगामा राई के दरमियान मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदामात फराहम करने से मुतालिक इस बिल को किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सांध्या राय ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इससे कबल दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान पर अफसोसनाक एटमी हमलों को 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद स्पीकर ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। पार्लियामेंट ने तसरुफात नंबर 3 बिल 2026 को मंजूरी दी है। ये बिल राज्यसभा में बहस के बाद लोकसभा वापस भेज दिया गया था। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:45 पर दोबारा शुरू हुई तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बिल पर गौर करने और उसे वापस करने के लिए इसे ऐवान में पेश किया। ये बिल 31 मार्च 2003 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बहुत सी खदशात पर होने वाले उन अखराजात के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से रकम के तसरुफ का इख्तियार देता है जो उस साल उन खिदमात के लिए मुख्तस रकम से तजावज कर गए थे। हुकूमत ने बहुत से तजावज करदा अखराजात को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दरखास्त की है। ये रकम कर्जों की अदायगी पर खर्च की जाएगी। बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने माली साल 2023 के दौरान होने वाले तजावुज करदा अखराजात की मंजूरी

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई।
3: कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है मनोहर चमोली मनु का लिखा ये पूर्व प्रसारित नाटक मुक्ति। इस नाटक के निर्देशक हैं विनय ध्यानी और प्रतिभागी कलाकार हैं पवन संगम, सविता सहाय, कुमारी सोनिया वर्मा और अनिल भारती।

0: धुम ठन से सिकुड़ गई है। अरे नाश पीटे शराबी किसे ले आया?
1: पता नहीं कौन है माँ।
0: ये भगवान, ये तो जवान लड़की उठा लाया घर पर। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
1: क्या कहेगा माँ?
0: हे भगवान, अरे बैठे बिठाए ये नहीं आपस क्यों भेज दिया? मैं अकेली जान पहले ही शराबी से परेशान हूँ, अब एक और बोझ, पता नहीं कौन है ये। अरे राजा क्यों रे, कौन है ये?
1: अरे मैं नहीं जानता माँ कौन है, सड़क के बीच इसे टकरा गया, सोचा कोई ट्रक इसे कुचल देगा बस। बाकी बात तो सुबह पूछ लेना वहां है। अब तू जा, जा सो जा और देख मुझे भी सोने दे माँ, है जा मेरी अच्छी माँ जा।

0: करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे वहां नहीं जाना। कौन कौन है यहाँ?
1: नहीं नहीं बेटा, डरो नहीं, डरो नहीं, यहाँ कोई नहीं मारेगा। मैं हूं ना बेटे तुम्हारे पास, मैं हूं।
0: छोड़ दो मुझे, दूर हटो, दूर हट जाओ मुझसे, मुझे मत छो, मत पास आओ मेरे, हटो, दूर हट जाओ।
1: हे भगवान,
0: कौन है? मैं कहाँ आ गई?
1: ये तो देख भी नहीं सकती। लगता है कोई गहरा सदमा लगा है इसे। अब क्या होगा, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे बताओ तो सही, तुम कौन हो? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा बेटी, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम ठहरो बेटी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। लो लो बेटी, पहले पानी पी लो। बेटी अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है?
0: नाम सुमन।
1: कहाँ रहती हो बेटी?
0: दिल्ली में।
1: और दिल्ली से अकेली?
0: क्या बताऊं, भाभी ने घर से निकाल दिया, मेरे माँ बाप नहीं है ना, और भाई को लकवा मार गया था। भाभी ने मुझे एक ट्रक वाले के हाथ कुछ रुपयों की खातिर बेच दिया। पता है वो ट्रक वाला मुझे यहाँ लेकर आया, वो जब पेट्रोल पंप में तेल भरवा रहा था तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। बीच सड़क में शायद मेरी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था, फिर किसी ने मुझे धक्का देकर सड़क पार कराने की कोशिश की और मेरा सिर सड़क के किनारे से जा टकराया। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
1: बस बस बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, तुझे अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरा बेटा राजा, राजा ही तो तुझे यहाँ तक उठाकर लाया है। इसे अपना ही घर समझ, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। बेटे देखो, मुझे तुम्हारा सहारा हो जाएगा, और मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूं ना, और मैं भी तेरे जैसी हूं। ले बेटा मेरा हाथ पकड़।
0: हाँ माँ।
1: आ, तुझे मैं अपना घर दिखाती हूँ। आओ बेटे, संभल के।

0: बेटा जरा मेरा हाथ पकड़।
1: जी
0: ये देख, ये रसोई है और
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ
0: ये बेटा इधर बच के आए घर से।
1: जी
0: ये देख, ये आंगन
1: जी
0: और इधर बाई तरफ हैंडपंप है और ये राजा का कमरा और देख अभी तक औंधा पड़ा है शराबी कहीं का। चल बेटी पहले तू नहा धो ले, मैं तेरे कपड़े ला रही हूँ
1: जी। अच्छा
0: और फिर मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अच्छा

0: भगवान, ये क्या हो गया?
1: ओ, क्या तोड़ दिया ये? माँ, कहाँ हो तुम? जब दिखाई नहीं देता इसको तो ये क्यों जाती है रसोई में? किसी दिन खुद को जला डालेगी और हमें भी फंसवा देगी। सुना तुमने माँ?
0: अरे हाँ हाँ सुन लिया। तू चिल्ला क्यों रहा है? अरे एक प्याली ही तो टूट गई ना, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत पुरानी हो गई थी। सुन सुमन बेटे, इधर आ मेरे पास। देख इसकी बात का बुरा मत मानना, ये बहुत मुंह फट है, लेकिन इसके मन में बेटा कोई खोट नहीं है। बस ये जरा गलत संगत में पड़ गया है बेटी। एक वो दिन था जब हमारी अच्छी खासी एक फर्नीचर की दुकान हुआ करती थी। दूर दूर से लोग राजा फर्नीचर वाले को ढूंढने आते थे।
2: अच्छा माँ,
0: सब कुछ इस शराब ने खत्म कर दिया बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं? ईश्वर ने तुझे रोशनी नहीं दी, लेकिन बेटा हमारे लिए तू रोशनी बनकर आई है
2: जी।
0: तू जरा राजा को समझा ना कि वो शराब ना पिया करे, शायद वह तेरी बात मान ले।
2: आप बिल्कुल चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं जरूर रोकूंगी इन्हें शराब पीने से।
1: माँ,
0: अरे अरे ये यही आ रहा है। सुन
2: जी
0: बेटे, मैं बाहर जाती हूँ, ये मौका उसे समझाने का बहुत अच्छा है।
2: जी
0: बेटी सुन, ये जरा मुंह फट है, इसकी बात का बुरा मत मानना। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ।
2: जी माँ।
1: माँ चाय नहीं बनाई आज?
0: बेटी सुमन।
2: जी माँ।
0: राजा के लिए एक प्याली चाय तो बना दे, मैं जरा नहा लूं।
1: नहीं नहीं मैं खुद बना लूंगा माँ।
2: क्यों, खुद के बना लेंगे? रसोई का सारा सामान इधर उधर बिखेर दोगे, फिर मुझे ही तो परेशानी होती है ना। और वो कप की प्याली, वो भी तो आप ही ने दरवाजे के किनारे पर रख दी थी ना, तभी तो मेरे पाँव से टकरा कर टूटी। ये ठीक है, रात भर खूब शराब पीजिए और दिन भर चाय। आप कुछ काम?
1: काम? कैसा काम?
2: वो दरअसल माँ जी कह रही थी कि आप बहुत अच्छे कारीगर हैं। हमें भी तो पता चले क्या क्या बना लेते हैं आप।
1: देखो मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, समझे?
2: ये लो चाय, वो कम बनाई है, ज्यादा चाय नुकसान देती है ना। और फिर मैं होती कौन हूँ समझाने वाली? पर कभी माँ जी के बारे में सोचा है? कभी अपने बारे में सोचा है? आखिर ये शराब कब तक साथ देगी आपका? कब तक, आखिर कब तक अपने आप से बचते फिरोगे? आप जिंदगी से भाग रहे हो, अब मुझे ही देखो, मेरी आंखें नहीं है, फिर भी मैं दुनिया को महसूस करती हूँ ना।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, बस रहने दो ये सब, ये बात बात में आंसू निकालना। माँ मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, देर से लौटूंगा।
0: ठीक है ठीक है।

0: Δεκ, είδα βέρ με πα. Μια μερία τσίμα. Μια βέρ. Δεκ, τρα λα λα κι άλλα, τι χάτρα τέκου, χα. Δεκ, ή γέμα, αρή, χα. Ή, ο γε δεγμα, γε. Δεκ, δεκ να δεκ, θα δω, τι λτρούγνε όλα, χα. Ο δεκ, πιέτσι κασμίνε άμα. Ο δεκ, δεκ, ή δεκ γουνία, δεκ ρήμα του. Δεγμα, Ράνια, Ράνια, πέσε καρπέντρι και καμ κρέγα, μα. Πατάτε σαπκο, μα. Με ζυντική σε πάγνε βάλα νέοι ου. Μα, ασέ, με πόδα τσίμα. Του με εγώ πατά. Πατά του με εγώ, με τέρα και αν λέει νεκτά, μα. Πατά, με ρία τσίμα, ε. मुझे समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है माँ. कहते सबको सबको कहते मुझे समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है.
1: क्या हो गया राजा? तू ऐसी हालत में काम करेगा क्या? दुनिया तुझ पर हंसेगी बेटा. होश में आ मेरे बच्चे, होश में आ मेरे बच्चे, होश में आ.
2: माँ जी, कौन है?
1: ओह,
2: तो आप हैं. आपका दिन अभी तक ढला नहीं. जानते हैं, सारी बस्ती सो चुकी है. ये
1: रहने दे बेटी, रहने दे. तो चुप हो जा.
2: नहीं माँ,
1: बात नहीं.
2: नहीं माँ, मैं चुप नहीं रह सकती. आज रोज रात को शराब पीकर माँ के दिल को दुखाना, ये बहादुरी नहीं है. अरे चार पैसे कमाकर माँ के हथेले पर लाकर रखो तो माँ जी को भी अच्छा लगेगा ना.
0: मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी है, समझे? बात करती है
1: बस बेटी, बस. देख तो ये देख, ये फर्नीचर बनाने के नए औजार खरीद कर लाया बेटी. देख मैं कितनी खुश हूँ. देख मेरा बच्चा अब कमाएगा.
2: कमाए
1: बेटी, ये जरूर कमाएगा, देखना जरूर कमाएगा.
2: ये मुंह से कितनी बदबू आ रही है. माँ जरा पूछिए इनसे, नशे की हालत में एक कील भी ठोक पाएंगे ये?
0: क्या बात करती है तू. कर सकता हूँ मैं, सब कुछ कर सकता हूँ, समझी?
1: तू जा बेटी, तू जा सो जा. पर सो जा बेटी, अब मैं भी सोने जा रही हूँ. तू सो जा बेटे,
2: ठीक है माँ.

0: माँ जी
1: ये लीजिए चाय।
2: ला बेटी
1: ये
2: चाय की प्याली मुझे पकड़ा दे। अरे दो घड़ी मेरे पास भी बैठ जाना।
1: बस माँ जी अभी आती हूँ, आपके लाडले को चाय दे, हम नहीं तो उठते ही चिल्लाएंगे कि चाय भी नहीं बनाई।
2: अरे बेटी वो तो आज सुबह ही निकल गया।
1: सुबह ही?
2: हाँ, वो बनारसी फर्नीचर वाला है ना।
1: कौन माँ जी?
2: तू उसे नहीं जानती है, एक फर्नीचर वाला है, वो उसके पास गया है। सुबह उठते ही मेरे पास आया था, कहने लगा कल से रोटी बांधनी है।
1: अच्छा,
2: दिन छिपने तक वो वहाँ काम करेगा। और हाँ, वो कह रहा था कि 1500 रुपए माहवार देगा बनारसी उसे।
1: अच्छा माँ।
2: बेटे हाँ। कल रात तेरी कही हुई बात उसे लग गई, अब तो वो जी तोड़ के मेहनत करेगा। और जानती है सुमन, ये सब तेरी वजह से हुआ।
1: ये कैसी बात करती है माँ जी आप? सच कहूँ माँ, मुझे तो लगता है ये नया जीवन आप ही ने मुझको दिया है।
2: सुमन अब बेटी मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने, तुझे पता है, हमेशा के लिए शराब छोड़ दी, इससे मैं बहुत खुश हूँ।
1: हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत। कोई तो है जिसने मेरी भावनाओं का सम्मान

किया, और राजा की वजह से ही तो मुझे नया जीवन मिला है। उस रात अगर राजा ना होता तो शायद मैं मर ही जाती। कितना बदल गया है राजा, और अब तो कभी भी मारी से झगड़ते नहीं सुना, और तो और आवारा लोगों का साथ भी छोड़ दिया है उसने। अब तो बस काम की धुन है राजा को। पर ये क्या हो गया मुझे, मैं राजा के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे मन ही मन में

0: उठिए। अरे क्या सोते ही रहेंगे, ये लीजिए मैं चाय बनाकर लाई हूं।
1: अरे तुम क्यों आई हो, माँ कहाँ है?
0: आज पूर्णिमा है ना।
1: हाँ हाँ
0: माँ मंदिर गई है।
1: अच्छा।
0: मुझे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें जगा दूँ। और क्या मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती?
1: अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम बेकार में क्यों परेशान होती हो, माँ भी तो है।
0: अच्छा, और मैं कुछ ना करूं? जो मुझसे बन पड़ता है मुझे वो नहीं करना चाहिए क्या? सुनो।
1: हाँ?
0: एक बात पूछूं?
1: हाँ पूछो ना।
0: तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना?
1: नहीं मानूंगा।
0: आप मुझसे दूर दूर रहते हो, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ शायद।
1: सुमन सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? अरे पगली, सच्चाई तो ये है, माँ को तुमसे बहुत लगाव हो गया है। जब देखो वो तुम्हारी ही बातें करती रहती है, सच। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें बोझ कैसे समझूंगा? तुमने तो
0: क्या?
1: तुमने तो मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं तो अंधेरी खाई में जा गिरा था, वो तुम ही तो हो सुमन, जिसने जिसने मुझे एक नई रोशनी दी। देखो दोबारा इस तरह की बात जबान पर मत लाना।
0: हाँ,
1: कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना सुमन, मैं हूं ना, और माँ भी साथ है हमारे साथ।
2: सुमन बेटी सुमन, अरे राजा उठ गया क्या बेटी?
0: अरे माँ जी आ गई हैं, लगता है आज आपको देर हो गई। हाँ माँ जी उठ गए हैं, चाय पी रहे हैं।
1: सुमन,
0: अरे नहीं नहीं
1: सुनो एक मिनट।
0: नहीं नहीं माँ जी बुला रही हैं, मुझे जाना है।
1: सच, सुमन ने इस घर की तस्वीर ही बदल दी। कितनी अकेली हो गई थी माँ, और अब कितनी खुश है वो, और मैं भी तो कितना अकेला हो गया था। सुमन को कैसे बताऊं कि मैं उससे दूर कहां हूं? वो हर दम हर पल हर घड़ी मेरे साथ है। मुझे मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास बैठी है। सच सुमन, तुमने मुझे आदमी बना दिया। मैं तो अपने लिए भी नहीं जी रहा था, तुम ही तो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो सुमन। अब कभी नहीं जाना इस घर को छोड़कर, मुझे छोड़कर। हाँ सुमन, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है, लेकिन सुमन भी तो अंधेरे में ही जी रही है। काश काश उसकी आंखें ठीक हो जाती और हाँ उसकी आंखों को ठीक होना होगा। मैं अच्छे डॉक्टरों से मिलूंगा, मैं अच्छे डॉक्टरों से मिलूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, सुमन की आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। लेकिन लेकिन इससे पहले इलाज का खर्च तो जुटाना ही होगा ना। हाँ आज ही से मुझे और मेहनत करनी होगी। मैं करूंगा सुमन, देखना देखना एक दिन तुम इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकोगी। हाँ सुमन, सच, ये विश्वास और प्यार है मेरा। हाँ सुमन, हाँ।

0: माँ जी नमस्ते।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: माँ जी, आज सुमन की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, राजा नहीं दिखाई दे रहा।
1: डॉक्टर साहब, वो अभी तो यहीं था। आप रुकिए, मैं अभी देखकर उसे लाती हूँ।
2: नहीं नहीं राजा, तू तू उसका सामना नहीं कर सकता। वो तेरा चेहरा देखकर डर जाएगी। तू अपना काला भद्दा और इतना डरावना चेहरा लेकर कैसे जा पाएगा उसके सामने? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके सामने, कभी नहीं।
1: अरे बेटा, तू ये क्या बड़बड़ा रहा है?
2: कुछ नहीं माँ।
1: अरे डॉक्टर साहब तुझे बुला रहे हैं, और आज तो सुमन की आंखों की पट्टी खुलने वाली है। चल जल्दी कर, उठ, यहाँ क्यों अकेला बैठा है तू?
2: माँ माँ, तू समझती क्यों नहीं, मैं नहीं जा सकता। तू तो जानती है मेरा चेहरा, मैं इस खराब चेहरे को लेकर उसके सामने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं।
0: अरे ये माँ बेटे के बीच क्या चल रहा है?
1: डॉक्टर साहब इसे समझाइए, ये पगला कह रहा है कि सुमन के सामने नहीं जाना चाहता। ये कहता है कि वो इसके चेहरे को देखकर डर जाएगी।
0: राजा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
2: जी जी डॉक्टर साहब।
0: सुमन की जिद है कि वो सबसे पहले, मालूम है वो सबसे पहले किसे देखना चाहती है?
2: जी।
0: अरे पगले, वो सबसे पहले राजा को देखना चाहती है। अब उठो और मेरे साथ चलो। सुमन, अरे सुमन कैसी हो? देखो राजा की माँ जी भी आ गई हैं।
3: मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन राजा कहाँ है?
0: राजा मैं कैसे बताऊँ तुम्हें?
3: क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: दरअसल राजा,
3: बताइए ना डॉक्टर साहब, बात क्या है?
0: सुमन दरअसल राजा तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता।
3: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि वो चाहता है कि जब तुम्हारी आंखों की पट्टी खोली जाए तो।
3: तो क्या, बताइए ना डॉक्टर साहब, तो क्या?
0: देखो बेटी, राजा वो चाहता है कि जब तुम इस दुनिया को पहली बार अपनी नजर से देखो।
3: आप चुप क्यों हो गए डॉक्टर साहब, आप बताते क्यों नहीं, बात क्या है?
0: बेटी वो राजा नहीं चाहता कि जब तुम्हारी आंखों की पट्टी खुले।
3: ओह डॉक्टर साहब, अब आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। जब तक राजा मेरे सामने नहीं आएगा, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी।
1: ये तुम क्या कह रही हो बेटी, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
3: क्यों क्यों माँ, मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा? राजा मेरे सामने नहीं आएगा तो मुझे भी नहीं चाहिए आंखें। माँ आखिर मेरा कसूर क्या है, क्यों राजा मेरे सामने नहीं आना चाहता?
1: नहीं बेटा, तेरा कोई कसूर नहीं है।
3: माँ,
1: राजा का चेहरा बेटा बहुत बदसूरत है।
3: माँ
1: सोचता है तुम उसे देखकर डर जाओगी, उससे नफरत करने लगोगी।
3: डॉक्टर साहब, अब मेरी भी यही जिद है, मेरे आंखों की पट्टियां खुलेंगी तो राजा के सामने ही। हाँ डॉक्टर साहब, राजा को आना ही होगा, उसके आने के बाद ही मैं इस रंग बिरंगी दुनिया को देखूंगी।

0: जल्दी से सुमन की आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना।
1: डॉक्टर साहब, राजा को मेरे सामने बिठाइए, ठीक मेरे सामने। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें सबसे पहले राजा को देखेंगी। राजा, तुम मुझे सुन रहे हो ना?
2: हाँ सुमन, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। मैं माफी मांगता हूँ सुमन, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कि
1: बस बस राजा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। राजा, बिल्कुल पास।
2: हाँ सुमन, मैं तुम्हारे पास हूँ।
1: डॉक्टर साहब, अब मैं तैयार हूँ। अब आप मेरी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मुझे कोई डर नहीं। राजा है ना मेरे पास। मैं तो राजा को देखते आ रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे राजा दिखाई दे रहा है। राजा, तुम मुझे हमेशा दिखाई देते रहोगे। डॉक्टर साहब, अब आप मेरी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। मेरी आंखें, मेरा राजा।
2: हाँ सुमन।
1: राजा, मेरी आंखें।
2: हाँ सुमन।

अभी आप सुन रहे थे मनोहर चमोली मनु का लिखा नाटक मुक्ति। इस नाटक के निर्देशक थे विनय ध्यानी और प्रतिभागी कलाकार थे पवन संगम, सविता सहाय, कुमारी सोनिया वर्मा और अनिल भारती। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी है। आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज प्रस्तुत है भैरवी काले का मराठी सुगम गायन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी तथा वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू मराठी सुगम संगीत। द आर्टिस्ट इज भैरवी काले। द अकंपनिस्ट आर अजय हेड़ाऊ ऑन हारमोनियम, निखिल मड़ावी ऑन तबला एंड वायोलिन आर्टिस्ट इज निशिकांत देशमुख।
0: भैरवी काले ने अपने पिता विकास काले तथा सुश्री मंगल देशमुख इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आप आकाशवाणी नागपुर की सुगम संगीत में ई ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
1: भैरवी काले रिसीव्ड हर म्यूजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम हर फादर विकास काले एंड मिस मंगल देशमुख। शी इज एन ई ग्रेड आर्टिस्ट इन लाइट म्यूजिक फ्रॉम आकाशवाणी नागपुर। शी होल्ड्स द संगीत अलंकार एंड पीएचडी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पजेसिंग अ मेलोडियस वॉइस, भैरवी काले हैज पार्टिसिपेटेड इन वेरियस म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। शी इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन।
0: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: हियर इज द फर्स्ट गीत वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे, संग बाय भैरवी काले।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणि मेघांचे हे ये जुळुनी नाते, पेंड बाय पोएटस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक तोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ, एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप तेवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedaou.

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: This part of the program was recorded in the studio of Akashvani Nagpur. The program continues.

0: Let us listen to the next segment.
1: ये आकाशवाणी है क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगी सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत.
2: This is आकाशवाणी. In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
1: Sukhvinder Singh, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं. संगीत के क्षेत्र में दो दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं. उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है. एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं. उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है. वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं.
2: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, इज अ रेनाउंड सूफी एंड फोक सिंगर ऑफ पंजाब. विद टू डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grade artist of Akashvani.
1: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाई मेनू खेड़ियां दी गल ना आख. इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है. हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है.
2: The central theme of this kafi revolves around divine love, unwavering devotion, and spiritual union. Heer's refusal to accept the kheedas symbolizes the soul's rejection of worldly attachments and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। व्हाइल द पोएट विशेस टू शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन लव एंड इनर अवेकनिंग, ही एडमिट्स his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason.

सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरिया पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर

0: आवश्यक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं, जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: This is a mystical Sufi composition attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the divine beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंग गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: द सॉन्ग lyricized by Dev Haryanvi is a poignant expression of longing, anticipation and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never comes.

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोक गीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla Charan, sarangi Sukhvinder Singh, keyboard Pankaj, flute Gurdeep Singh and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है।

0: नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned.